और मॉर्निंग ट्रैक्स जो हैं वो हमारा और आपका साथ देने वाले हैं, साथ निभाने वाले हैं। चलिए बिना देर किए आज एक बार फिर से इस सुबह में शुरुआत करते हैं इटहैपन्स की। वैसे मैं बता दूं कि इटहैपन्स इस वक्त आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ हर रोज की तरह। तो चलिए आज के इटहैपन्स का ये पहला ट्रैक अभी एंजॉय करेंगे और इसके उस पार फिर और बातें हमारी आपकी जरूर होंगी।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय करें आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर दोस्तों। और इसके पहले कि सफर की शुरुआत में आगे बढ़े, विश करते हैं उन्हें जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है। जी हाँ, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे बेबीज, आपको जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और हमारे विशेष हैं कि यूं ही आप जिंदगी का हाथ थामे हुए जिंदगी के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी को रोशन करते रहें। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और देखिए, एक ऐसा बंधन जहां पर हर सुख दुख में आप एक दूसरे का साथ निभाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो बस हम दुआ करते हैं कि ये बंधन हमेशा ऐसे ही खूबसूरत बना रहे। जिनकी आज है कोई विश पूरी होने वाली है, जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके लिए प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जापन से एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रीच ब्रिस्वानी 1701 AM पर। जी हाँ, आपके ब्रेकफास्ट शो में आज एक बार फिर से सताक्षी आपका साथ निभा रही है। देखिए, कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है, यानी हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होने वाला है या जो कुछ भी हो रहा है, इसकी प्लानिंग जो है वो ऊपर वाले ने पहले ही कर रखी है। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसमें एफर्ट डाल के उसमें कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो मौका भी आता है जब आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती हैं, या बहुत कोशिश करके देख ली बॉस, लेकिन आप संभाल नहीं पा रहे चीजों को। तो ऐसे वक्त में वर्कलोड लेकर ज्यादा करेंगे भी क्या? मतलब कभी कभी चीजों को छोड़ देना चाहिए। फैमिली का वर्कलोड, ऑफिस का प्रेशर, काम का प्रेशर, अपने करियर का प्रेशर, ना जाने कितने प्रेशर ले ले करके हमने अपनी ही जिंदगी का स्यापा बना डाला है। तो जो चीजें फिक्स्ड हैं, आप उनके लिए सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। वर्कलोड लेकर ज्यादा करेंगे भी क्या? मतलब कभी कभी चीजों को छोड़ देना चाहिए। फैमिली का वर्कलोड, ऑफिस का प्रेशर, काम का प्रेशर, अपने करियर का प्रेशर, ना जाने कितने प्रेशर ले ले करके हमने अपनी ही जिंदगी का स्यापा बना डाला है। तो जो चीजें फिक्स्ड हैं, आप उनके लिए सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, आप उन्हें ठीक करने की कोशिश कर

सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। जी हाँ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो जहाँ पर ब्रेकफास्ट के साथ साथ सुबह की ताज़ा तरीन और बेहतरीन बातों का हमारा आपका जो साथ है वो आगे बढ़ता रहता है और चलता रहता है। देखिए ऐसा है कि कई बार लोग ना हमसे वो एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं जो बॉस हमने कभी नहीं सोचा होता कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस है और हम जी जान लगा देते हैं उनको पूरा करने में, उन पर खरे उतरने में, क्योंकि क्या करें भाई, इज्जत का सवाल है भाई। अगले ने हमसे उम्मीद लगाई है तो हमें तो उसे पूरा करना ही है, और इस चक्कर में हम अपना कई बार नुकसान कर बैठते हैं क्योंकि उसके लिए हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है जो हम भी पहले नहीं सोच सकते थे, और शायद फिर भी हमसे होती नहीं है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस धरी की धरी रह जाती हैं, उनकी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतरते, फिर वो उदास होते हैं और हमारी टेंशन की वजह बन जाते हैं। वही दूसरी तरह के भी लोग होते हैं, वो लोग जो हम नहीं जानते लेकिन उनको लगता है कि हम नकारा हैं, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, ऐसे भी लोग हैं। यानी कि जो हम खुद को नहीं समझ पाए ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो समझ लेते हैं कि हम या तो जरूरत से ज्यादा चीजें कर सकते हैं या

जरूरत के मुताबिक भी काम नहीं कर सकते। तो अब क्या करें ऐसे लोगों का? भाई ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम उतना ही करें जितना हमसे बन पड़ेगा। यानी कि अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं वो हमें खुद को पता है, तो दूसरे क्या सोचते हैं उसको नजरअंदाज कीजिए और आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। और सुनते रहिए सदाक्षी के साथ इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रसवानी 107.1 FM।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं ठापन्स, आपके साथ सताक्षी है और इस वक्त हम उस मोड़ पर हैं जहां एक बार फिर से तीन बैक टू बैक ट्रैक्स निभाने जा रहे हैं हमारा साथ। तो चलिए बिना देर के एंजॉय करते हैं उस गाने को जो आज के शो का है पहला ट्रैक। आइए सुनते हैं अभी इट हैपेंस में आज का गानों की हैट्रिक का ये पहला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसवानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर इस वक्त, और इट हैपेंस में गानों की हैट्रिक में तीन बैक टू बैक ट्रैक्स हमारा साथ दे रहे हैं, तो गानों की हैट्रिक का ये अगला ट्रैक एंजॉय करेंगे। सुनते रहिए हमारे साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस को।

अठापन सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर गानों के हैट्रिक के इस लास्ट ट्रैक के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और इसके उस पार फिर से बातों का सिलसिला हमारा और आपका होगा शुरू। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। आपके फोन में भी जरूर फैमिली ग्रुप्स बने होंगे ना,
1: हाँ,
0: जिसमें सारी फैमिली सारे रिलेटिव्स, अच्छा उसमें भी कैटेगरीज बन जाती है कि फैमिली मेंबर्स के अलग ग्रुप व्हाट्सएप पे और रिलेटिव्स के साथ में अलग ग्रुप्स है ना, और सारे मैसेज फटाफट कम्युनिकेट हो जाते हैं। लेकिन वो मैसेजेस जो सामने बैठ कर कम्युनिकेट हो सकते हैं उनसे हम अक्सर भागते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप फोन पे तो बना लिए, फोन पे तो सारी फैमिली को एडअप कर लिया, लेकिन जो आसपास में लोग परिवार के ही बैठे हैं, हमारे अपने ही बैठे हैं, उनसे बात करने की अब हमें फुर्सत नहीं मिलती है। कभी सोचा है कि ये इस फोन ने हमें अपनों से ही कितना दूर कर दिया है? मतलब पास बैठकर भी एहसास ही नहीं होता कि हम अपनों के साथ अपनों के पास बैठे हुए हैं। कभी हम कुछ कहना चाहते हैं, कभी वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये कमबख्त फोन जब हाथों में रहता है तो दिलों की दूरी बढ़ जाती है। कभी सोच कर देखिएगा कि अगर वो रिश्ते आपके पास कल नहीं रहे तो क्या ये फोन जो है ये आपका साथ निभा पाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स की, आपके अपनों की जगह ले पाएगा? अगर नहीं तो थोड़ी देर के लिए ही सही इसे साइड कर दिया करिए, ताकि अपनों से भी एक जो बातचीत का सिलसिला है वो चल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी थॉट के साथ, इसी बात के साथ, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आप एंजॉय कर रहे सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

जहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। जी हाँ, वही साथ जहाँ पर कुछ बेहतरीन ख्वाबों का सिलसिला हमारे ब्रेकफास्ट पर चल निकला है। देखिए, ब्रेकफास्ट का जो वक्त होता है बड़ा ही खूबसूरत और हसीन होता है, क्योंकि दिन भर तो वक्त मिलता नहीं एक दूसरे से बात करने का। अब सुबह नाश्ते का जो टाइम है उस पर सब साथ होते हैं, तो अपनों के साथ ढेर सारी बातें भी हो जाती हैं, है ना। अब वो जमाना तो रह नहीं गया जब शौक पूरे हो जाया करते थे, दोस्तों यारों के साथ अपनों के साथ घूमने निकल जाया करते थे। अब तो लाइफ का बेस्ट चैप्टर चल रहा है। क्या कहा आपको, अभी भी शौक के लिए समय मिल जाता है? तो यानी कि अभी आपकी लाइफ में आपकी जिंदगी का बेस्ट चैप्टर आना बाकी है जनाब, क्योंकि जिसकी लाइफ का बेहतरीन चैप्टर शुरू हो जाता है ना, उसके पास फिर शौक के लिए समय नहीं बचता, उसके अपने जो ख्वाब है उनके लिए समय नहीं बचता। ये बेस्ट चैप्टर कुछ भी हो सकता है, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी जॉब, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, किसी से इश्क मोहब्बत प्यार, कुछ भी। लेकिन जब लगे कि आप शौक पूरे करने की ख्वाहिश नहीं रही या सबसे इम्पोर्टेंट वक्त ही नहीं है, तो समझ लीजिए कि यही है आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम। और उसी टाइम के नाम ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने होए हो जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आर संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे कुछ किसी दियां गल्लां कर लवांगे कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद मेरी पसंद सब दी पसंद रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिरसोनी 101.1 साडे फेसबुक पेज है जी। बिरसोनी @bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है वो अपनाओ पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिन से बने हुए हैं। देखो फिल्मा दे हिट या फ्लॉप होने का हिसाब रखते हूं तुहानू इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स ते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर ते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लेने। तो देखो जेकर तुहाडे दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है तां बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसी भी अपना फिल्मी जी के अपडेट करना चाहते है क्यों तां हुण मैं थोनू इहो जिहे गल्लां दसन लगूंगी जानी हैगी है ना, जिन्हां नूं जाण के तुसी कहोगे कि सच्ची इस तरह भी हुंदा है। सच्ची हुंदा हुंदा दस्सदे उस बारे, पर पहलां तुसी सुन लो एक गीत।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिनाल बने हुए। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल होंदे ने जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, यही दसदे आं। पापी लैगी सुणो

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: सब राज्य खुशे

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मवाणी 101.9 FM ते जी आरजे संदेश अलग दे नाल से बने हुए हूँ। जी मैं तुहानू पहला दस्सिया सी ना कि किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट हैगी है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लीए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, जिहड़ी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर होंगी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप होंगी है। तो एवरेज फिल्म कि एवरेज होंगी है, फिल्म अपनी लागत क्ड लेंदी हैगी मामूली मुनाफा कमा है, यानी कि 1 करोड़ बनी हैगी 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो वह हिट हुंदी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट हुंदी है। तो ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे,

हां जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101 FM ते जी आरजे संदेश चौलक दे नाल तुसी बने हुए हो। हां जी, तां देखो हुण असली कमाई दा सच जानते हैं। तां लोग अक्सर लोग समझते हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने ते बजट 80 करोड़ दा हैगा तां फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स ते सिनेमा घर मालिकां दे कोल जांदा हैगा। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूटर्स दे हाथ विच जो पैसा आउंदा है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैं। फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर्स का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होयो। इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई दी। अजकल फिल्मां रिलीज होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है, जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या वो मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स गाने तो कमाई होंगी है। फिर होंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले में एवरेज होंगी है, पर इन राइट्स की वजह ना प्रोड्यूसर्स मुनाफा कमा लेंगे ने, पर मूवी के हिट फ्लॉप या एवरेज होने का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब न ही तय होंगे है।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो जी आर चे संदेश अलग दिन बने हुए हम देखो फुटबॉल क्यों होंदा इस दे विच महत्वपूर्ण इस दे बारे भी गल कर लैने इंपोर्टेंट क्यों होंदा है। ता कमाई तो इलावा ना एक होर अहम पैमाना हुंदा ओही हुंदा है फुटफॉल यानी कि किन्ने लोकां ने टिकट खरीदी है की है। मूवी दे टिकट अजकल महंगे हो गए ने इसलिए 100 करोड़ रुपए कमाना सौखा हो गया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनन दे लई ए भी देखिया जांदा है कि किन्ने लोकां ने टिकट खरीदे है ने ते मूवी देखण लई लोग गए है ने। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मां ओ हुंदियां ने जिन्हां दे विच फुटफॉल भी ज्यादा हुंदी है जिवें शो लई हुण तुहानू है कौन अते हम आपके है कौन ते धुरंधर भी इस कैटेगरी दे विच है शोले तो इलावा।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसाने 101.1 FM ते जी अच्छे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। हुण जिहड़ी मैं वर्ड की गल कर रही हूं, शायद कईयां ने पहली बार सुनिया होना, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझिया जाए तो स्लीपर हिट वो फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कम पर कम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट, पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

0: अधिकारत ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

पूरी उम्मीद हैगी है कि थोनू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है ने, बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है ने, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे जानने, तो थोनू जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थोनू किस तरह की जानकारी तुसी चाहते हैं। क्यों रेडियो बिसवानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, तो bisawani@bisawani.com साडी ईमेल आई डी है। सर जेड़ा भी अपनाना चाहते हो अपनाओ, साडा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Aayega?
3: Aayega.

दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज निविया के साथ। और कुछ भी कहने से पहले ये कहना जरूरी है कि हैप्पी फ्राइडे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। मतलब मैं कहने वाली थी कि आप कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छा ही फील कर रहे होंगे। मतलब देर इज नो रीजन कि आप अच्छा फील ना करो, बिकॉज इट्स फ्राइडे, छुट्टी आ रही है और छुट्टी जो है वो आने वाली है। सो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी, राइट? मतलब छुट्टियों के लिए हमारे पास कुछ लाइनअप ना भी हो, कुछ प्लान ना भी हो ना, तब भी छुट्टी जो है वो अच्छी लगती है। अरे अच्छे से सोने को मिल जाता है, वो भी तो कितनी कमाल की बात है, राइट? सो आई नो फ्राइडे जो है वो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें लेकर आता है, एक मज़ेदार सा आलम लेकर आता है। और उसी आलम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको पता है प्रोग्राम की शुरुआत होती है सबसे पहले एक हेल्दी रिचुअल के साथ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। हमेशा कहती हूँ ट्राई कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा ये कितने अच्छे से आपको अच्छा फील करवाती है। अपनी ब्रीदिंग को जब आप अच्छे से करते हो तो वो बहुत ही अच्छे से आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी यू नो व्हाट कॉन्शियसनेस के लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है। और वही हम करने वाले हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अच्छा अच्छा फील करते हुए अब जरा गाना बजा दिया जाए आपके लिए एक मज़ेदार सा, क्योंकि फ्राइडे है, वही फ्राइडे के गाने तो मज़ेदार होने चाहिए। और ये गाना आपको सच में उस मस्ती की दुनिया में ले जाएगा। क्यों कह रही हूँ मैं, ये है परिणीता मूवी का गाना, गाने का नाम है कस्तो मज़ा।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ फ्राइडे का माहौल तो बन गया है। मतलब गाने आप सुन रहे हो, ओ मेरी लैला लैला। जी हाँ जी हाँ, डोंट वरी डोंट वरी, आप टेंशन मत लिया करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लाइन गाती हूँ और आप लोग टेंशन में आ जाते हो। ओ माय गॉड, रोको, कोई निविया को रोको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मैं नहीं गा रही हूँ। चलिए ठीक है, गाते नहीं है, लेकिन मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। और मौसम जो है वो है बहुत ही ठंडा ठंडा ठंडा। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस ठंड से निपटने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि कल ही की बात है, मेरी बहुत ही प्यारी लिसनर है, उन्होंने तो मुझे बहुत ही टेस्टी हलवा और अदरक वाली चाय भिजवा दी थी। अब आप लोग मुझे क्या भिजवाने वाले हो आप सोच लीजिए, क्योंकि ठंड है भाई, कुछ तो अच्छा भिजवाना पड़ेगा अपनी आरजे निविया को। ओके चलिए, इसी के साथ यहाँ पर मौसम के बारे में बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा रहा था, बट उतना हुआ ही नहीं, क्योंकि 18.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है अभी। ऑल्दो फील आपको हो रहा है 18.3 डिग्री सेल्सियस के करीब। जैसे मैंने कहा था, ठंडी है भाई, ठंडी है, ठंडी है भाई, ठंडी है। जी हाँ, इसी के साथ ये तो दिन की बात हुई, रात की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे, और बरखा बहार भी आपको देखने को मिल रही है। सो ऑफ कोर्स वो तो चलता ही रहेगा, आगे भी मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। बीच में थोड़ा कम हो सकता है, बीच में कहीं कहीं किसी इलाके में बारिश जो है वो नहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ इलाकों में मुझे दिख रही है, और कुछ इलाकों में जो मुझे दिख रहा है 5 बजे के बाद वो बूंदाबांदी मुझे नजर आ रही है। सो या इसके लिए रेडी रहिए, और मैंने कहा था ना, छातों के बिना ना निकलिएगा, क्योंकि उसके बिना भीग जाएंगे आप, और ये गर्मी की बारिश नहीं है, ठंड की बारिश है, आप भीगना तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे। इसी के साथ यहाँ पर ये तो है मौसम का हाल, एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट, और फ्राइडे यानी कि आज का मौसम का हाल तो हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं कल और परसों, यानी कि मतलब सैटरडे संडे वीकेंड की बात करते हैं। 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर विद 50% चांसेस ऑफ बारिश। मतलब कल भी मुझे बारिश दिख रही है, बट इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है, कुछ इलाकों में होगी, कुछ में नहीं होगी, वैसी वाली सिचुएशन होगी। और संडे को 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 80% चांसेस है बारिश होने के, 1 to 5 mm बारिश हो सकती है। और या सो रेडी रहिए, कल जो है थोड़ी राहत मिल सकती है बारिश से, ऑल्दो कितनी मिलेगी वो तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि भाई मौसम है, इसके बारे में कोई भी एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता है। सो या इसके साथ आप अपने वीकेंड पे क्या करने वाले हो थोड़ा हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी कर लें वो, और बाकी आप क्या कर सकते हो वो तो हम आपको बताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जल्दी से कुछ अच्छा सा भिजवा दीजिए, क्योंकि ठंड हो रही है भाई, आपकी आरजे निविया को भी ठंड लगती है, कुछ यम्मी सा टेस्टी सा, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, कुछ खाने वाला। आप लोग बोलोगे निविया शर्मा यू आर सो भुक्कड़, सामने सामने से ही चीजें मांग रही हो भाई, ठंड है क्यों नहीं मांगू मैं। जी हाँ चलिए, इसी के साथ यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, और एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉग से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूँ?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। बढ़िया बढ़िया खूबसूरत गाने भी यहाँ पर चल रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप भी इसमें अपना योगदान दे दें। और योगदान कैसे होगा आपका, चलिए हम वही बताने वाले हैं आपको। आप अपने फेवरेट गाने हमारे इस प्रोग्राम इवनिंग वाइब में फरमाइश कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप अपना फेवरेट गाना किसी को डेडिकेट करके उन्हें स्पेशल भी फील करवा सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको करनी है तो आपको एक नंबर डायल करना है, और वो नंबर है +9182888717001। आई रिपीट, +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हो, थोड़ा सा नाच लेते हैं मीर जान। जी हाँ, ऑफकोर्स मैं आपको नहीं कह रही, बट गाने का नाम है ये। चलिए सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

दोस्तों, आजकल के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, और खासकर वो लोग जो अभी शादी नहीं जिन्होंने की है। जी हाँ, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि मिलेनियल्स की बात मैं कर रही हूँ। जेंजीज भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर वो उतने ज्यादा अलूफ भी हैं। मतलब वो कुछ भी करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि दुनिया उनको सर्व करने के लिए बनी है। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मिलेनियल्स। जी हाँ, सो कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मैं एक मीम पढ़ती हूँ जो कि मुझे फनी लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई ऐसा करे तो सच होगा। जी हाँ, सो वहां पे लिखा हुआ था कि ऑन माय वेडिंग डे आई डिस्ट्रीब्यूट मैथ्स प्रॉब्लम दोज हु कांट सॉल्व कांट ईट। जी हाँ, मतलब उसने ठान लिया कि वो जब शादी करेगा तो वो अपनी शादी पे लोगों को मैथ्स प्रॉब्लम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जो लोग मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे उनको खाने को नहीं मिलेगा। सो अगर आपको खाना खाना है तो आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। आप लोग बोलोगे कि ये क्या बात हुई भाई, हम इतना भारी भरकम शगुन लेके जाते हैं किस लिए, वो खाना खाने के लिए। कौन होते हो तुम हमें मैथ्स की प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले और ये कहने वाले कि अगर मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर तुम हमको खाना नहीं खाने दोगे। अरे तुम होते कौन हो, अगर तुम मैथ्स की प्रॉब्लम हमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हम तुम्हें साइंस की प्रॉब्लम वहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई नो वेडिंग गेस्ट कैन बी रियली फनी, एंड द थिंग इज कि जिसने भी ये सोचा है बहुत ही खतरनाक सोचा है। मैथ्स की प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर जो नहीं कर पाया उसे सॉल्व, तो उसे खाना नहीं मिलेगा। गेस वॉट, आपकी आर्जे निविया को तो बिल्कुल खाना खाए बिना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मैथ्स आता ही नहीं है, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। आप मुझे बताइए आपका मैथ्स कैसा है, और सच में आप किसी शादी में पहुंच जाओ जहां पे सच में आपको तभी खाने को मिलेगा अगर आपको मैथ्स आता है, तो आपको कैसा फील होगा। या टेल मी अबाउट योर थॉट्स। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
12: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, फाइनल मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में और उसके लिए लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ लोग स्पेन को शिप कर रहे हैं, कुछ लोग अर्जेंटीना को शिप कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप किसको शिप कर रहे हो, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? और इसी के साथ आपको एक और दिलचस्प चीज बताती हूँ। वेल, इस वर्ल्ड कप में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो खिलाड़ी था वो ना तो लियोनेल मेसी थे, मतलब ऑफ कोर्स मेसी थे, एम्बापे थे, यू नो यमाल थे और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन एक बंदा, एक खिलाड़ी, एक स्पोर्ट्स पर्सन जिसने सबके दिलों में जगह बना ली, दैट वाज अर्लिंग हॉलैंड ऑफ नॉर्वे। जी हाँ, अब इनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अर्लिंग हॉलैंड जो है वो इतने जबरदस्त खेले हैं कि वो गोल्डन बूट्स की रेस में एम्बापे और लियोनेल मेसी के साथ में थे। ऑफ कोर्स उन्हें अपनी जर्नी जो है वो खत्म करनी पड़ी क्वार्टर फाइनल्स में Against Spain, but that doesn't mean कि उन्होंने अच्छा नहीं खेला है। उन्होंने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जो है वो खेला है, इतना ज्यादा जबरदस्त कि लोगों ने उन्हें ट्रिब्यूट दे दी, वो भी इतनी खास कि वो हमेशा अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे। और वो क्या ट्रिब्यूट है? Well, over 559 बच्चों के नाम उनके नाम पर रखे गए क्योंकि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि लोग लिटरली उनके दीवाने बन गए, इतने दीवाने बन गए कि अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रख दिया। जी हाँ, और सिर्फ 1, 2, 3, 4 या 10, 20 ने नहीं बल्कि ओवर 559। जी हाँ, जिनमें 468 बच्चों का ऑफिशियल नाम रजिस्टर किया गया है हॉलैंड, और ज्यादा यानी कि 91 जो है उनमें से थे जिनको पूरा का पूरा नाम दिया गया अर्लिंग हॉलैंड। जी हाँ, मतलब अर्लिंग हॉलैंड ने इतना अच्छा खेला, इतनी ज्यादा जगह जो है बना ली लोगों के दिलों में, पेरू के लोगों के दिलों में, पेरुवियन लोगों ने खासकर ये ट्रिब्यूट उन्होंने दी है कि उनका नाम जो है वो हमेशा के लिए अमर हो गया. मतलब इतने सारे बच्चों का एक साथ नाम रखा गया, दैट टू टू गिव ट्रिब्यूट टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेयर. नाउ आई हैव ऑल्सो बिकम अ फैन ऑफ दिस प्लेयर, सो आई नो हाउ दैट फील्स. ही हैज यू नो प्लेड सो वेल, मतलब इतना अच्छा खेला है इन्होंने. और कभी भी आप अर्लिंग हॉलैंड को खेलते हुए देखोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि ये बंदा ना जो है वो पहले तो आराम से चल रहा होता है, लोगों को लग रहा होता है कि ये कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या करने वाले हैं, इनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो जद्दोजहद में लगी होती है, लेकिन ये जो है वो चल रहे होते हैं और फिर एकदम से कहीं से निकल के एकदम से आएंगे और गोल कर देंगे. या दैट्स हु अर्लिंग हॉलैंड इज. बट या ट्रिब्यूट देना वो भी अपने बच्चों का नाम रख के किसी ऐसे स्पोर्ट्स आइडल को, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है. जी हाँ, तो ये तो सिर्फ अर्लिंग हॉलैंड को मिला है और किसी को नहीं मिला है. मतलब कितने बड़े बड़े और भी प्लेयर्स हैं, बट अर्लिंग हॉलैंड ने सबसे ज्यादा खूबसूरत खेला और सबसे ज्यादा जगह जो है वो अपने फैंस के दिलों में बनाई है. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्यार किसी से भी हो सकता है और उसमें कोई भी दोराय नहीं है। मतलब आपको किसी से भी प्यार हो सकता है और आपका दिल किसी पर भी आ सकता है। और हमने इसके बड़े बड़े और बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। लेकिन प्यार किसी क्रीचर से हो सकता है, ये भी हमने देखा है। मतलब आपको कुत्ते बिल्लों किसी से भी प्यार हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक शादी वाले प्यार की, रोमांटिक प्यार की, और वो भी एक मेंढक से। जी हाँ, सो एक किस्सा जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और जब मैं इसके बारे में मैंने पढ़ा और सुना और देखा, तो सबसे पहले तो मैं गिर गई। जी हाँ, कहाँ पर, मैं बेड पे बैठी हुई थी और मैं बेड से गिर गई। पहले तो मुझे लगा कि किसी ने कोई स्कैम किया है। मतलब ऑफकोर्स ये कोई प्रैंक है, ये ऐसा हो थोड़ी सकता है। बट टर्न्स आउट ये रियलिटी है। जी हाँ, एक लेडी, एक औरत सजी धजी दुल्हन के लिबास में आती है और अपनी चुनरी का एक पल्ला जो है एक मेंढक के गले में बांध देती है और 7 फेरे लेती है। आप लोग बोलोगे, हैं नीवे शर्मा, ये कहां देख लिया तुमने? वेल, अगर सोशल मीडिया पे आपने अभी तक ये नहीं देखा तो पता नहीं आप कौन सा सोशल मीडिया चला रहे हो, क्योंकि ये किस्सा बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। और इस लेडी को लोगों ने समझाने की कोशिश की, पर ये लेडी बोल रही है, अरे प्यार किया तो डरना क्या और प्यार किया तो भरना क्या। यहां पे मैं जरूर करूंगी, मुझे शादी करनी है मेंढक से क्योंकि प्यार हुआ है मुझे मेंढक से। एंड यहां दैट्स व्हाट शी डिड, शी लिटरली टुक 7 अफेयर्स एंड ऑल द वॉज, जो कि एक और जो हिंदू जो है ट्रेडिशंस में होते हैं शादी में। शी डिड ऑल ऑफ दैट, बट एक्सेप्शन यही थी कि वहां पर कोई बंदा नहीं था, ह्यूमन नहीं था, एक मेंढक था। मतलब कुत्ता बिल्ली होता ना, मैं फिर भी समझ जाती, बट मेंढक, ओ माय गॉड, आई डोंट नो। बट देन अगेन, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। आई शुड बी जजी और शुड आई नॉट? प्लीज टेल मी, क्या आप लोग इस चीज को जज करोगे या नहीं करोगे? मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जजी हो रही हूँ। तो क्या मैं रेसिस्ट हूँ? प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या मैं एक लेडी की मेंढक से शादी को जज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ?
5: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है, क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस।
3: अरे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ?
5: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है, क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से

0: recognize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
3: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों इसी के साथ अब आपको बता देते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो इस वीकेंड, खासकर मूवीज और थिएटर्स के फ्रंट पे. जी हाँ, सो क्या आप देख सकते हो बाहर जाकर अपने नजदीकी सिनेमा घरों में? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट. जी हाँ, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो कॉकटेल 2 लगी हुई है, आप उसे देख सकते हैं. और ये है शाहिद कपूर और कृति सेनन और रश्मिका मदाना की मूवी. जी हाँ, ऑफ कोर्स ये रेज बेट वाली मूवी आपको लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि स्टोरी कुछ भी है और ये स्टोरी सेंस नहीं बनाती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कृति सेनन इज लुकिंग रियली हॉट एंड जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत ही जबरदस्त लग रही है तीनों एक्टर्स के बीच में. सो यू कैन वॉच इट. बट जो हाईलाइट है आई थिंक वो है धमाल 4. जी हाँ, धमाल सीरीज जो है वो बहुत ही जबरदस्त है. और मेरे तो लिटरली बचपन में मैं धमाल देखा करती थी. आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा तुम अपनी उम्र को ब्रैक करने की कोशिश कर रहे हो यहां पर. जी हाँ, कि तुम बचपन में धमाल देखा करती थी. No, it's not like that. The thing is कि धमाल जो है वो बहुत ही जबरदस्त मूवी रही है और ये कॉमेडी मूवी है और इसमें एक एक एक्टर जो है वो बहुत ही जबरदस्त है. सो फिर चाहे धमाल 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबकी सब धमाल जो है वो जबरदस्त है. और धमाल 4 जो है वो आ गई है. गो फॉर इट, यू नो, टेक योर फैमिली एंड इंजॉय कीजिए इस मूवी को, क्योंकि ये कॉमेडी है और एडवेंचर भी आपको मिलने वाला है. सब कुछ मिलेगा आपको मजेदार सा. और इसी के साथ आप देख सकते हैं अल्फा मूवी. जी हाँ, अल्फा आप देख सकते हैं, जो कि आलिया भट्ट, बॉबी देओल, शर्वरी वाघ और अनिल कपूर की मूवी है. और इसमें लिटरली बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मारधार हो रही है. मतलब आलिया भट्ट बहुत क्यूट क्यूट अवतार में नहीं है, बल्कि बहुत ही किलर अवतार में है. सो यू कैन वॉच दैट. वेलकम टू द जंगल कैन ऑल्सो बी योर ऑप्शन. अगेन अ फनी ऑप्शन एंड अ वेरी इंजॉयबल मूवी. जी हाँ, आप देख सकते हो इसे जाकर. अक्षय कुमार के साथ ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो आपको इस मूवी में नहीं दिखेगा. सो ये सारी की सारी मूवीज आप इंजॉय कर सकते हो. और इसके साथ और भी बहुत सारी मूवीज है जो लगी हुई है थिएटर्स में, which I'm gonna talk about, लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और जबरदस्त सा गाना.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात हो रही है मूवीज की, और कौन कौन सी मूवीज आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देख सकते हो, कौन कौन सी नई रिलीजेज हैं, कौन कौन सी पुरानी रिलीजेज हैं, उसके बारे में बात हो रही है। मैंने काफी सारी बॉलीवुड मूवीज के बारे में आपको बता दिया जो कि आप इंजॉय कर सकते हो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। अब बात करते हैं दो और तीन और मूवीज की जो कि बॉलीवुड से ही है। जी हाँ, एक है इविल डेड, एक है जी हाँ सो एक है इसमें मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, मैं वापस आऊंगा ये मूवी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मैंने कहा था आपको कि एक मूवी जो है वो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होने वाली है आपके लिए, और वो है मैं वापस आऊंगा। नाउ दिस मूवी इज अबाउट अ लव स्टोरी। जी हाँ, एक लव स्टोरी, दो प्रेमियों की कहानी है ये, जो कि अलग हो जाते हैं जब दो वतन अलग हो जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन के वक्त की ये प्रेम कहानी है। वो बिछड़ जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, वही कहानी जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। वेल, इम्तियाज अली ने बनाई है ये कहानी, और आपको पता है इम्तियाज अली इज अ मास्टर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्राफ्ट, सो यू नो वेरी वेल। प्लस ऑफ कोर्स ए आर रहमान ने इसका म्यूजिक बनाया, और इम्तियाज अली और ए आर रहमान जब भी साथ में आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत मैजिक क्रिएट करते हैं। जी हाँ, इसी के साथ एक और मूवी जो है जो आप देख सकते हो, जो कि एग्जैक्टली बॉलीवुड से नहीं है लेकिन ये साउथ से है, और वो है एक्शन एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नागा बंधम द सीक्रेट ट्रेजर। जी हाँ, ये मूवी जो है वो स्पेशल है, और इसमें आपको एक्शन एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर सब कुछ मिलने वाला है, और बहुत बड़ी स्टार कास्ट भी आपको मिलने वाली है, फैंटेसी भी इनफैक्ट आपको इसमें थोड़ी सी मिलेगी, और ये मूवी भी आप इंजॉय कर सकते हो। यू आर गन्ना मोस्ट प्रोबेबली लाइक इट। एंड इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं उस मूवी की जो कि आप देख सकते हैं इस वीकेंड और आप इंजॉय करने वाले हैं, और वो है द ओडिसी। जी हाँ, द ओडिसी के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत कहा है। और द ओडिसी जो है वो है मैट डेमन, और साथ में एन हाथवे, ज़ेंडेया, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन और लुपिटा नियांग की मूवी। मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं एक ही बात कह दूंगी तो वो आपको जो है वो पिच करने के लिए काफ़ी है, एंड दैट इज़ क्रिस्टोफर नॉलन। क्रिस्टोफर नॉलन की ये मूवी है, इट्स अबाउट ग्रीक मैथोलॉजी, एंड अगर आपको ग्रीक मैथोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप इसे देखिए, और अगर आपको नहीं भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ गो फॉर क्रिस्टोफर नॉलन, क्योंकि वो मास्टर ऑफ क्राफ्ट हैं व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग। मतलब क्रिस्टोफर नॉलन की ओपनहाइमर, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, कौन सी मूवी की तारीफ हम मैं करूं और कौन सी की छोड़ दूं। जी हाँ, सो या ये सारी की सारी मूवीज क्रिस्टोफर नॉलन ने बनाई है, और क्रिस्टोफर नॉलन फिर से वापसी कर रहे हैं द ओडिसी के साथ में, और या देखिए इसको और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी। और इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी आने वाली है, ऑफकोर्स उसको आने में भी थोड़े दिन बाकी हैं, बट इसके अलावा जो मूवीज मैंने आपको बताई हैं उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि जबरदस्त होने वाला है, एकदम जबरदस्त।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर श्रेनिव्या के साथ। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजों के बारे में बात हम कर चुके हैं और बहुत सारी और गपशप भी हम करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया है खबरों की दुनिया की तरफ रुख करने का। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं क्या चल रहा है दुनिया में और क्या हो रहा है पॉलिटिकल वर्ल्ड में। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ वो है भारत की यानी कि इंडिया की। पश्चिम बंगाल, पैसेंजर ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर हो गई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, सो पश्चिम बंगाल से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक पैसेंजर ट्रेन से स्कूल वैन टकरा गई और शुक्रवार सुबह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में करना सुबर्णा स्टेशन के पास हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में वैन में सवार 2 स्कूली बच्चे और साइकिल चला रहा एक बुजुर्ग शामिल है। ये घटना सुबह करीब 6:41 पर कटुआ अजीमगंज सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 24A2 पर हुई, जब ट्रेन नंबर 53054 निमटीटा कटुआ पैसेंजर रॉयल एकेडमी स्कूल जा रहे बच्चों को ले जा रही टाटा सुमो स्कूल वैन और एक साइकिल से टकरा गई। 3 बच्चों और टाटा सुमो के ड्राइवर को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। बाकी घायल बच्चों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और शो चल रहा है इवनिंग वाइब, मेरे यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निव्या के साथ। और यहाँ पर इंडिया से एक और खबर, एक ऐसा अनशन, एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कि अब काफी इंटरनेशनल भी हो गया है। जी हाँ, सोनम वांगचुक में कहा है कि मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक तो जिंदा रहूंगा। सो जंतर मंतर पर अनशन कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के 20वें दिन के लोगों को संबोधित किया है। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं बाहर से भले ही कमजोर हूं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग भी अंदर बाहर दोनों तरफ से बहुत मजबूत होंगे। हमें ये मजबूती 20 जुलाई तक चाहिए, जब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा, मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। अगर आप लोग नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रही तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। पवन खेड़ा ने कहा कि सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम भी सभी को चिंता है। एक बहुत ही संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। उन्होंने कहा, ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनके स्वास्थ्य की चिंता है, जो बच्चे बैठे हैं उनके स्वास्थ्य की भी चिंता है। आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।

जी हाँ, प्रदर्शन सिर्फ भारत में नहीं हो रहे बल्कि यूक्रेन में भी हो रहे हैं। जी हाँ, यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो रहे हैं प्रदर्शन। पर ये क्यों हो रहे हैं, आइए जरा जानते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव को बदलने के अचानक लिए गए फैसले से सिविल सोसाइटी में भारी नाराजगी है और सांसदों ने भी इसका विरोध किया है। गुरुवार सुबह राजधानी कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों में ज्यादातर युवा जमा हुए। उन्होंने फेडोरोव से दूर रहो और जीत में बाधा डालना बंद करो लिखे हुए पोस्टर उठाए और शर्म करो के नारे लगाए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सिक्योरिटी सर्विस SBU के कार्यवाहक प्रमुख मेजर जनरल येवेनी खमारा का नाम कार्यवाहक रक्षा मंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि खमारा के तकनीकी युद्ध अभियानों में व्यापक और कई मामलों में अभूतपूर्व अनुभव हासिल किया है और वो मददगार हो सकता है, पर लोग ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।

आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा आज ब्लू है, पानी पानी तो सही है, लेकिन दिन इज नॉट सो सानी सानी, सो हाउ कैन यू प्ले दिस सॉन्ग टू टीज अस? आर यू ट्राइंग टू टीज अस? वेल, आप कह सकते हो आई एम ट्राइंग टू टीज यू, जी हाँ, मतलब, बट डोंट वरी, थोड़े टाइम में ये दिन आ जाएंगे फिर से जब ब्लू ब्लू पानी होगा, दिन भी सानी सानी होगा, और इंतजार कीजिए उसका, जी हाँ, इंतजार कीजिए, इंतजार करने से तो कुछ भी मिल जाता है। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर एक और ऑफकोर्स खबर की ही बात हम करने वाले हैं, और ये है अमेरिका ने ईरान पर किए ताजा हमले, पुलों और न्यूक्लियर प्लांट को बनाया निशाना, जी हाँ। सो यहाँ पर ये दोनों ना मतलब सबर नहीं कर रहे हैं, ये दोनों जो है वो लगे हुए हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट विद दोनों से अमेरिका एंड ईरान। सो अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने लगातार छठी रात ईरान पर हमले किए हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच संघर्ष बना हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कम करना था। इसके साथ ही कमांड ने बताया कि स्ट्रेट को नाकेबंदी के तहत उसने एक जहाज पर नियंत्रण किया है, जी हाँ। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि अमेरिकी मिसाइलों हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित केशम द्वीप के करीब गिरी हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियर प्लांट वाली जगह बंदर अब्बास और बुशहर में गिरी है। ये भी कहा गया कि हॉर्मजगन प्रांत में दो पुलों पर हमले हुए हैं। बीबीसी ने हॉर्मजगन प्रांत में बंदर आवास के पश्चिम में स्थित एक पुल पर हुए हमले की पुष्टि की है। इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान बातचीत के लिए वापस नहीं आया तो वे ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला करेंगे, एंड टर्न्स आउट उन्होंने ये शुरू कर दिया है, जी हाँ। और यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
7: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
6: अच्छा, वो क्या?
7: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
6: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
7: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
8: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नेविया के साथ। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी बताने वाली हूँ और इसे आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमेशा मैं बात करती हूँ क्रिस्टोफर नॉलन की और द एक्यूरेसी ही शोज इन हिज फिल्म्स। जी हाँ, और वो अपनी फिल्म और अपनी स्टोरी टेलिंग के किस हद तक चले जाते हैं, मतलब उसको रियल बनाने के लिए और उसमें रियल चीजें दिखाने के लिए, वो भी बहुत ही ज्यादा कमांडेबल है। अब क्रिस्टोफर नॉलन ने इंटरस्टेलर बनाई है 2014 में। जी हाँ, मतलब 2014 में वो आ गई थी, रिलीज हुई थी, बनी तो उससे पहले है। अब अगर आपने इंटरस्टेलर नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, लेकिन अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि इंटरस्टेलर में एक फुटेज दिखाई जाती है जिसमें ब्लैक होल को पहली बार दिखाया जाता है। मतलब एक रिंग जैसी शेप है, मतलब एक गोला सा बना हुआ है और बीच में जो है वो एक लेंस जैसा दिख रहा है जिससे वो जो है वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। जी हाँ, अगर आपने ब्लैक होल को कभी भी देखा है तो वो वैसा दिखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर ऑफिशियली जारी की थी 2017 में? सो आप लोग बोलोगे जो इंटरस्टेलर में दिखाई गई वो क्या रियल इमेज नहीं थी? वेल, वो भी रियल इमेज थी। तो आप लोग बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि साइंटिस्ट के पास जो है वो पिक्चर नहीं थी ब्लैक होल की, लेकिन इंटरस्टेलर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के पास थी? वेल, यही बहुत ज्यादा दिलचस्प है। जब मैंने कहा कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म की एक्यूरेसी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो मैंने बहुत ही सही कहा। जी हाँ, उन्होंने एक बहुत ही बड़े थियोरेटिकल फिजिसिस्ट केप थ्रोन को हायर किया था। एंड ही इज जस्ट नॉट एनी फिजिसिस्ट, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। अब उन्होंने अपनी पिक्चर को बनाते वक्त अपनी वीएफएक्स टीम के साथ कीप थ्रोन को रखा। उन्होंने कीप थ्रोन को कहा कि हम चाहते हैं कि ब्लैक होल की पिक्चर बनाना। अब ब्लैक होल कैसा दिखेगा हमें नहीं पता, लेकिन आप अगर अपनी जो रिसर्च है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो शायद हमें मिल जाए। एंड कीप थ्रोन ने वो किया। जी हाँ, कीप थ्रोन ने अपनी सारी की सारी जो रिसर्च है वो उनकी वीएफएक्स टीम के साथ शेयर की। गेस व्हाट, उन्होंने अपनी सारी की सारी इक्वेशंस को वैसे ही जैसे उन्होंने रिसर्च में किया था वैसे ही उन सारी की सारी इक्वेशंस को उन्होंने कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटर को कहा गया, कमांड दी गई कि जो ये इक्वेशंस हैं वो बिल्कुल सही क्वेश्चन थी। मतलब हमें पता था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, थ्योरेटिकली वो कैसा दिखता है वो हमें पता था, लेकिन तस्वीरों में वो कैसा दिखता है वो किसी को नहीं पता था। वही हुआ कि थ्रोन ने वो इक्वेशन कंप्यूटर में डाली और उसके बाद उसे कमांड दी गई कि ये जो इक्वेशन से जो भी तस्वीर सामने आएगी वो आप हमें दीजिए एग्जैक्टली इन्हीं इक्वेशन से। और फिर उस कंप्यूटर ने सच में वो किया जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, और वो थी तस्वीर ब्लैक होल की। जी हाँ, वो ब्लैक होल की तस्वीर जो कि साइंटिस्ट के पास भी नहीं थी इससे पहले, लेकिन इंटरस्टेलर को बनाते बनाते कीप थ्रोन और उनकी वीएफएक्स टीम ने उस तस्वीर को हासिल कर लिया, उस तस्वीर को जारी कर दिया। जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ? वेल, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट आल्सो, बट बहुत ही दिलचस्प कहानी है। लेकिन एक और गाना मैं आपको यहाँ पर सुनाने वाली हूँ और फिर हम करेंगे उसके बारे में बात।

जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता रही हूँ कहानी कि कैसे इंटरस्टेलर बनाते बनाते विजुअली एक्यूरेट ब्लैक होल दिखाने की कोशिश जो है वो रियल में ब्लैक होल की पिक्चर बन गई। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टोफर नॉलन चाहते थे कि वो जो ब्लैक होल अपनी पिक्चर में दिखाएं वो विजुअली एक्यूरेट हो, और इसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज विनर कीप थ्रोन, जो कि थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे उस वक्त, उनको हायर किया अपनी VFX टीम के साथ। कीप थ्रोन ने कह दिया कि जो रिसर्च मेरे पास है, जो इक्वेशंस मेरे पास हैं, बस आप उनको सीधा कंप्यूटर में फीड करो और जो भी उससे निकल कर आएगा विजुअली और तस्वीर के तरीके में वही ब्लैक होल होगा। और वही हुआ। जी हाँ, उसके बाद जब ये हुआ, उसके बाद रेंडर होने में सिर्फ उसकी एक फ्रेम को एक पूरा दिन लग गया, मतलब 24 घंटे। कैन यू बिलीव, उसकी रेंडरिंग में इतना टाइम लग गया, और इसका पूरा का पूरा डाटा 800 TV से भी ज्यादा जो है वो बढ़ गया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट सीन जहां पे इंटरस्टेलर में ब्लैक होल को दिखाया जाता है पूरी तरह से। वो पूरा का पूरा सीन जो है वो 800 टीवी से ज्यादा हो गया। गेस व्हाट, जब ये हो गया उसके बाद जो है वो ह्यूमैनिटी को पहली बार ब्लैक होल की पिक्चर देखने को मिली। मतलब थ्योरेटिकली ये एग्जिस्ट करता है और ऐसा होता है हमें पता था, लेकिन विजुअली ये कैसा दिखता था वो हमें इंटरस्टेलर में सबसे पहले देखने को मिला। जी हाँ, ऐसे ह्यूमैनिटी ने अगर साइंटिस्ट से के थ्रू अगर ब्लैक होल की पिक्चर देखी होगी तो वो 2017 था, लेकिन इंसेप्शन नहीं बल्कि इंटरस्टेलर ने वो हमें पहले ही दिखा दी थी। गेस व्हाट, उसके बाद क्या हुआ, केप थ्रोन ने इसके बाद इंटरस्टेलर के बाद उसी विजुअल पिक्चर पर दो और बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे और रिसर्च की, और वो रिसर्च जो है वो दुनिया भर के सबसे बड़े साइंस जर्नल में जो है वो पब्लिश की गई। इमेजिन, एक हॉलीवुड मूवी बनाते बनाते एक रियल रिसर्च हो गई। इसलिए कहा जाता है कि राइटर्स लिखते हैं और साइंटिस्ट उसके बाद जो है वो उसके बारे में खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, एंड दैट्स व्हाई राइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पर यू नो कूडोस टू क्रिस्टोफर नॉलन कि उन्होंने कुछ भी कूल सा नहीं दिखाने की कोशिश की, वो चाहते थे विजुअली एक्यूरेट ब्लैक होल। जी हाँ, इट्स सो कूल। मतलब आप इसके बारे में सोचते हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि कौन बंदा ऐसा करता है कि लिटरली एक फिजिसिस्ट को लेकर आए, वो अपनी VFX टीम के साथ उन्हें रखा और कहा कि हमें एक विजुअली एक्यूरेट ब्लैक होल चाहिए और प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। गेस व्हाट, और उसके बाद पिक्चर बन जाती है और जो बंदा है, जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, वो इसके बारे में और रिसर्च कर पाता है उस पिक्चर के आने के बाद जो कि उन्होंने उस हॉलीवुड मूवी के सेट पे निकाली थी। इमेजिन, दैट्स सो कूल, राइट? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: LKR events proudly.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार चेनिविया के साथ, और दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि वक्त हो गया है आपके फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। वो सवारी जो कि चाहती है अपना गाना प्ले करवाना, मतलब कि ऑफ कोर्स जो चाहते हैं अपने फरमाइशी गीत प्ले करवाना, और वो भी पुराने गाने, तो आ जाइए बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम। ओल्ड इज गोल्ड में पुराने किस्से हम आपको सुनाते हैं, पुराने खूबसूरत गाने हम आपको सुनाते हैं, कुछ आपकी तरफ से, कुछ हमारी तरफ से, और ऐसे ही ये खूबसूरत तराने बन जाते हैं। जी हाँ, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी से शुरुआत करते हैं सेगमेंट की। जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो है एक क्लासिक कल्ट फेवरेट, और वो है तुम अगर साथ देने का वादा करो। आई डोंट नो बट मेरे दिमाग में ये गाना चल रहा था, सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। तो आ जाइए अपनी फरमाइश के साथ, और ये रहा आपके लिए गाना।

0: दोस्तों, एक चीज जो पहले भी हिंदी सिनेमा में थी और आज भी हिंदी सिनेमा में है, वो है कि कुछ चल रहा है तो सब वही करना चाहते हैं। मतलब अगर थ्रिलर्स चल रही हैं तो लोग थ्रिलर्स ही बना देंगे, बहुत सारे और भी। अगर रोमांटिक चलने लग गया तो रोमांटिक ही बनाते रहेंगे, और अगर कॉमेडी चलनी शुरू हो गई थी तो कॉमेडी बनाते रहेंगे। एक बात की बात है, जब कल्याण जी से पूछते हैं किशोरदास या कल्याण जी और आनंद जी से कि कल्याण जी, आप ये सारे गाने एक जैसे ही क्यों बना रहे हो, मतलब कुछ तो अच्छा गवाइए, कुछ तो अलग हमसे गवाइए। तो कल्याण जी कहते हैं सामने से किशोरदा को कि किशोरदा, देखो बात तो ये है, और किशोरदा ने बिल्कुल एक्टिंग करके दिखाया है ये कि कैसे कल्याण जी जो है वो बोलते हैं, वो अपने मुंह पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि किशोर जी देखिए, अब यही चल रहा है तो हम भी यही कर रहे हैं और इसीलिए हमें यही करना पड़ेगा। और किशोरदा कहते हैं कि देखिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि सब ये कर रहे हैं तो आप भी ये करना चाहते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पर फिर भी थोड़े अच्छे गाने तो मुझसे गवाइए। जी हाँ, अब किशोरदा तो हमेशा से फेमस रहे हैं, उनको थोड़ी सी प्यारी प्यारी चटरपट और चटाके वाली चीजें जो है वो पसंद है, फिर चाहे वो उनकी आर्टिस्ट्री में हो और फिर चाहे उनके रियल लाइफ में ही क्यों ना हो। तो किशोरदा कहते हैं कि भाई बात तो सही है, अगर आप वो भी करना चाहते हो जो सब कर रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा अलग से, तो थोड़ा अच्छे गाने तो गवाइए। तो कल्याण जी आनंद जी फिर से अपने मुंह पर हाथ रख के बोलते हैं कि किशोर जी, अभी तो यही चल रहा है तो यही होगा, तो यही अगर आपने किशोरदा को किसी की एक्टिंग करते हुए नहीं देखा है ना, तो जरूर देखेगा, यू आर गन बी सो एंटरटेन्ड दैट आप बोलोगे वाह क्या बात है। बट किशोरदा इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ हिज जनरेशन, ऑफ कोर्स। मतलब उनकी एक्टिंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: कभी कभी मेरे दिल

जी दोस्तों, एक और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है किशोर कुमार को लेकर, और ये बपी लहरी का भी किस्सा आप कह सकते हो। सो एक पिक्चर थी, 1985 का वक्त था, यानी कि 1985 का एक वक्त था, और अमिताभ बच्चन पर एक गाना फिल्माया जाना था, और उस गाने को गाने के लिए बपी लहरी, जो कि उसका संगीत बना रहे थे, उन्होंने शब्बीर कुमार को चुन लिया। जी हाँ, शब्बीर कुमार को उन्होंने चुन लिया। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि वो शब्बीर कुमार से ही इस गाने को गवाने वाले थे। जी हाँ, और निर्माता निर्देशकों को जब इसके बारे में पता चला तो वो आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, शब्बीर कुमार अच्छा गाते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला जो गाना है इसे किशोर दा ही गाएं, क्योंकि अमिताभ बच्चन पर किशोर दा की आवाज जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। पर यहाँ पर बपी लहरी जो है वो अपने फैसले पर अड़े रहे, बट ये अडिगनेस उन्होंने थोड़े ही दिन दिखाई। कुछ दिन तो वो अड़े रहे लेकिन उसके बाद उन्होंने मान लिया कि ठीक है, ओके, किशोर दा से ही इस गाने को गवाएंगे। और किशोर दा से इस गाने को गवाया गया, और जब किशोर दा ने इस गाने को गाया तो सबको पता चल गया कि क्यों किशोर दा की आवाज ही इस गाने में ये मैजिक क्रिएट कर सकती थी। अब मैं आपको उस गाने के बारे में बताऊंगी या उसका नाम बताऊंगी तो आप बोलोगे, है इस गाने में कोई और किशोर दा के किसी कोई कैसे सोच सकता है, किसी और से गवाने का कैसे सोच सकता है। वेल, या बप्पी लहरी ने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सोचा था शब्बीर कुमार से ये गवाने का, और गाने का नाम था धूप में निकला न करो रूप की रानी। जी हाँ, ये गाना किशोर दा का नहीं होता, किसी और का होता, तो आप गेस कर सकते हो कितना आपको ये पसंद आता और कितना नहीं, बताइएगा जरूर। यहाँ पर सुनते हैं इसका और फिर करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल ऑफ कोर्स फिर से, लेकिन कल आपसे मिलना होगा इवनिंग वाइब में नहीं बल्कि टॉप 10 हॉट 10 में, और इवनिंग वाइब में आपसे मिलना होगा मंडे को। तो आइए, अच्छे से आइएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, और ये वीकेंड को अच्छे से जो भी चीजें आप करना चाहते हैं वो सर्व करने से के साथ बिताइएगा। जी हाँ, सो दैट्स अबाउट इट, एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, हैप्पी वीकेंड एवरीवन। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत ही खूबसूरत ही गाना, और गाने का नाम है ए फूलों की रानी बहारों की मलिका। ये गाना एट लास्ट मेरी सारी की सारी फीमेल लिसनर्स के लिए। बाय बाय, सी यू, टाटा।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
2: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन ब्रोंकस की धमाकेदार जीत। कल रात कमबैक स्टेडियम में ब्रिस्बेन ब्रोंकस ने शानदार खेल दिखाते हुए पेनरिथ पैंथर्स को 14-12 से हराकर एक बड़ा अपसेट कर दिया। वहीं आज से ऑरेंज रोशनी में नहाएगा ब्रिस्बेन। जी हां, आज से शहर का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल ब्रिस्बेन ओपन हाउस शुरू हो रहा है। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए आज शाम हमारा आइकॉनिक स्टोरी ब्रिज, विक्टोरिया ब्रिज और ब्रिस्बेन सिटी हॉल पूरी तरह से खूबसूरत ऑरेंज रोशनी से जगमगा उठेंगे। वहीं ब्रिस्बेन जिन फेस्टिवल की शुरुआत, जी हाँ, फूड और ड्रिंक्स के शौकीनों के लिए आज से बोवन हिल्स के ब्रिस्बेन शो ग्राउंड्स में ब्रिस्बेन जिन फेस्टिवल शुरू हो चुका है। 19 जुलाई तक चलने वाले इस 3-डे फेस्टिवल में लोकल और इंटरनेशनल क्राफ्ट डिस्टिलर्स के साथ साथ बेहतरीन स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 6.7 मिलियन का बड़ा फ्लड रेजिलियंस प्रोजेक्ट शुरू। जी हाँ, साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में बाढ़ से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। ब्रिस्बेन नदी बेसिन से जुड़े अपर वारल क्रीक में $6.7 मिलियन के रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर काम आज से शुरू हो गया है। वहीं बजट से मिली कॉस्ट ऑफ लिविंग में राहत। जी हाँ, ब्रिस्बेन काउंसिल के नए बजट के तहत शहरवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें शहर के पूल्स के लिए बेहद पॉपुलर $2 का समर डिप्स प्रोग्राम फिर से लौट रहा है। वहीं द टिवोली में पीटर हुक का म्यूजिकल नाइट। ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक थिएटर द टिवोली में आज रात बारिश के बावजूद म्यूजिकल लवर्स की भारी भीड़ उमड़ी। लेजेंडरी रॉक आर्टिस्ट पीटर हुक एंड द लाइट ने न्यू ऑर्डर और जॉय डिवीजन के एवरग्रीन गानों पर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि लोग झूमने पर मजबूर हो गए। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। जी हां, आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं स्कायरूट एयरस्पेस का नया धमाका। स्पेस टेक सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है। भारत का प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्कायरूट एयरस्पेस कल यानी 18 जुलाई को सुबह 11:30 बजे अपने स्वदेशी रॉकेट विक्रम 1 का पहला ऑर्बिटल लॉन्च करने जा रहा है। वहीं करोड़ों नौकरी पेशे लोगों के लिए खुशखबरी। जी हां, EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करीब 35 करोड़ मेंबर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। इस बार पीएफ खातों में ब्याज का पैसा तय सीमा से काफी पहले यानी 15 जुलाई को ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं वाराणसी को मिला 25,446 करोड़ का गिफ्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए 25,446 करोड़ रुपए के दो बड़े एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर्स को मंजूरी दे दी है। वहीं नीट री एग्जाम के नतीजे घोषित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार देर रात नीट री एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में कुल 11.21 लाख कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। वहीं पश्चिम बंगाल से दुखद खबर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक स्कूल वैन की ट्रेन से टक्कर हो गई। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले शी जिनपिंग की एआई पर ग्लोबल अपील। शंघाई में चल रहे वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और गवर्नेंस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं होना चाहिए। वहीं ट्रंप का अमेरिकी चुनाव प्रणालियों पर बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से देशों को संबोधित करते हुए दावा किया कि अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन से पहले फेडरल इलेक्शन कानून में बदलाव करने के लिए कुछ डी क्लासिफाइड दस्तावेज भी जारी किए हैं। वहीं जेडी वेंस का बड़ा कबूलनामा। जी हाँ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में माना है कि ट्रंप प्रशासन ने कुख्यात जेफरी एपस्टीन की फाइलों को रिलीज करने में बड़ी चूक की है, जिससे जनता में अविश्वास बढ़ा। उन्होंने बिना किसी सबूत के ये दावा भी कर दिया कि एपस्टीन के संबंध अमेरिकी और इसराइली इंटेलिजेंस के टॉप लेवल से थे। वहीं म्यांमार तट के पास बड़ा हादसा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने आशंका जताई है कि म्यांमार के तट के पास शरणार्थियों से भरी दो नावें पलट गई हैं, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों के डूबने का खतरा है। वहीं मिडल ईस्ट में बढ़ा तनाव। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपना अभियान छठे दिन भी जारी रखा है। साथ न्यूजीलैंड ने बदले स्टूडेंट वीजा नियम। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने आगामी 20 जुलाई से अपने पाथवे स्टूडेंट वीजा में बड़े बदलाव करने की मुहिम जारी की है। इसके तहत अब विदेशी छात्रों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी के ऑप्शंस बढ़ाए जाएंगे और अलग अलग लेवल्स पर वीजा की शर्तों को आसान किया जाएगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले मेसी बनाम स्पेन। जी हाँ, वर्ल्ड कप का महामुकाबला फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है। अर्जेंटीना ने एक शानदार कमबैक करते हुए इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में लियोनेल मेसी का सामना उसी स्पेन से होगा जिसने फ्रांस को हराकर फाइनल का टिकट कटाया है। इसी के साथ एंड्रो फर्नांडिस और मेसी की इमोशनल कहानी वायरल। फुटबॉल की दुनिया से एक खूबसूरत कहानी सामने आ रही है। साल 2016 में जब मेसी ने रिटायरमेंट का मन बनाया था, तब एक टीनेजर एंड्रो फर्नांडिस ने उन्हें ना रुकने के लिए खत लिखा था और आज वही एंड्रो वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अर्जेंटीना को चैंपियन बनाने के लिए खेल रहे हैं। वहीं आईसीसी का वर्ल्ड कप फॉर्मेट में बड़ा बदलाव। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेंस ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप के पूरे स्ट्रक्चर में एक बड़ा फेरबदल करने का फैसला किया है। नए फॉर्मेट को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि आने वाले समय में हर एक मैच ज्यादा कॉम्पिटिटिव और रोमांचक हो सके। वहीं जो रूट की मास्टर क्लास पारी, लॉर्ड्स में होगा फैसला। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही सीरीज बेहद रोमांचक हो गई है। कार्डिफ में खेले गए मैच में जो रूट की नाबाद 99 रनों की बेहतरीन पारी की बदौलत इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। अब यह सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
7: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
6: ऐसा क्या खास है वहाँ?
7: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
6: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
7: MC's Indian Indian and Island food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
8: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
9: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
8: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
9: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
8: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
10: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
11: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
10: अरे वाह, इनका पता बताना.
11: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
12: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो ਆਉਂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.0 FM ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असी ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़िया मेरिया अपनिया सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे, कुछ किसी दियां गल्लां कर लवांगे, कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद है, मेरी पसंद है, सब दी पसंद है, रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिरसोनी 101.0 FM साडे फेसबुक पेज है जी, bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है, जरिया जिहड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है वो अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो फिल्मा दे हिट या फ्लॉप होण दा हिसाब रखते हूं ता तुहानूं इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स अते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर अते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लैने आ। तो देखो जेकर तुहाडे दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है तां बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसी भी अपना फिल्मी जी के अपडेट करना चाहते है क्यों तां हुण मैं तुहानूं इहो जिहे गल्लां दसन लगूंगी जानी हैगी है ना, जिन्हां नूं जाण के तुसी कहोगे कि सच्ची इस तरह भी हुंदा, सच्ची हुंदा हुंदा, दस दिओ उस बारे, पर पहलां तुसी सुन लो एक गीत।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: It's not just a movement. It's a mentality. It's a lifestyle. It's Ninja Nation.
1: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्लू सोनी 101.1 ते जी आज संदेश अलग दिनाल सी बने हुए। देखो

0: सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होता है। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन के खर्चे शामिल होंदे ने, जिवें एक्टर की फीस, क्रू, सैट के खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी की मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, यही दसदे आं। पपी लै गी सुणो।
1: It's Black Lives.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: सब राज्य खुश है।

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो दुस्वानी वन सनो वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हूँ। जी मैं तुम पहला दस्या सी ना कि किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट हैगी है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लिए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, जी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे विच बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर हुंदी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप हुंदी है। तो एवरेज फिल्म कि हुंदी है, एवरेज हुंदी है फिल्म अपनी लागत कढ लैंदी है तो मामूली मुनाफा कमाती है, यानी कि 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो वह हिट हुंदी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट हुंदी है। तो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे।

हां जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसाने वन सन वन एम ते जी आर जी संदेश चौलक दे नाल तुसी बने हुए हो। हां जी, तां देखो हुण असली कमाई दा सच जानते हैं तां लोग अक्सर लोग समझते हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने ते बजट 80 करोड़ दा हैगा तां फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स ते सिनेमा घर मालिकां दे कोल जांदा हैगा। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर दे हाथ विच जो पैसा आता है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैं। फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store well known for its quality service and reasonable prices.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई दी। अजकल फिल्मां रिलीज होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या वो मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स गाने तो कमाई होती है, फिर होंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले में एवरेज होंगी है, पर इन राइट्स की वजह ना प्रोड्यूसर्स मुनाफा कमा लेंगे ने, पर मूवी के हिट फ्लॉप या एवरेज होने का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब न ही तय होंगे।

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 107.1 जी। आर जी संदेश अलग दिन बने हुए हूँ। देखो फुटबॉल क्यों होंदा है, इस दे विच महत्वपूर्ण, इस बारे भी गल कर लेने, इंपोर्टेंट क्यों होंदा है। तो कमाई तो इलावा ना एक होर अहम पैमाना होंदा ओही होंदा है फुटफॉल, यानी कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदी है की है। मूवी दे टिकट अजकल महंगे हो गए ने, इसलिए 100 करोड़ रुपए कमाना सौखा हो गया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनन दे लई ए भी देखा जाता है कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदे है ने, ते मूवी देखने लई लोग गए है ने। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मां ओ हुंदियां ने जिन्हां दे विच फुटफॉल भी ज्यादा हुंदी है, जिवें शोले। हुण तुहानू है कौन अते हम आपके है कौन ते धुरंधर भी इस कैटेगरी दे विच है शोले तो इलावा।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। हुण जिहड़ी मैं वर्ड दी गल कर रही हां, शायद कईयां ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तां सिंपल भाषा विच समझिया जावे तां स्लीपर हिट उह फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कंपरकम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत विच इसकी कमाई बहुत घट, पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

पूरी उम्मीद है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेड़े बॉलीवुड लवर है कि नहीं, बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है कि नहीं, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे अच्छा नहीं, तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थोड़ा किस तरह की जानकारी तुसी चाहते है क्यों। रेडियो बिसोनी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, तो bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आई डी है, सरिया जेड़ा भी अपनाना चाहते हो अपनाओ, साडा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोज

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: repeat for the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी.
1: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी.
2: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवाणी.
3: To everyone tuning into Radio Brizwani, this is Alia.
4: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brizwani से.
5: To everyone tuning into Radio Brizwani, this is Shahrukh Khan.
6: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brizwani.
7: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया. समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं. यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

न बदला मैं, न बदला वो, न बदला तू। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कम वक्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टाग्राम।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया. समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं. यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम समाप्त।

मित्रों एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है और आज शनिवार 18 तारीख है और आपको बतला दूं कि आज का प्रोग्राम थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि 8:15 बजे हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे क्योंकि आज मुझे कुछ कहीं जाना है, कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, तो इसलिए आपसे बस क्षमा चाहता हूं। 6:40 पर सूर्य उदय होगा और 5:14 पर सूर्यास्त होगा। आज ब्रिस्बेन, इप्सविच, सनशाइन कोस्ट में तीनों केंद्रों पर ज्यादातर धूप निकलेगी और 21 रहेगा तीनों केंद्रों पर दिन में, और ब्रिस्बेन में 14 रहेगा रात्रि को, हवा का रफ्तार 21 रहेगा, और इप्सविच में 12 रहेगा रात्रि को, 21 हवा का रफ्तार, और सनशाइन कोस्ट में 21 रहेगा दिन में, रात्रि को 16 हवा का रफ्तार, 31 थोड़ा झोंके के साथ वायु बहेगी। फिर साउथ पोर्ट ले चलते हैं जहां पर गोल्ड कोस्ट में हल्की बारिश होगी, 19 दिन में, रात्रि को 16 हवा का रफ्तार, 29। अवनेडी में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी, 26 रहेगा दिन में और रात्रि को 21 हवा का रफ्तार, 13। 6:40 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:50 पर सूर्य अस्त होगा। लंबा समय ज्यादातर धूप निकलेगी और 27 दिन में, रात्रि को 21 हवा का रफ्तार, 26, और सुबह में कुछ हल्की बारिश होती रहेगी और 24 दिन में, रात्रि को 22 हवा का रफ्तार, 29। ऑकलैंड न्यूजीलैंड ले चलते हैं जहां आकाश पर घटा छाई हुई है, 16 दिन में रहेगा, रात्रि को 13 हवा का रफ्तार, 19। 7:29 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:24 पर सूर्य अस्त होगा। वेलिंगटन में धूप निकली है और 13 दिन में, रात्रि को 8 हवा का रफ्तार, 24। फिर मुंबई ले चलते हैं मित्रों जहां पर हल्की बारिश होगी और 29 दिन में, रात्रि को 27 हवा का रफ्तार, 21। और नई दिल्ली में क्लाउडी बट वेरी वार्म, गर्मी कहेंगे ना, हॉट, 37 मैक्सिमम, 31 मिनिमम, 16 विंड स्पीड। 6:30 सूर्य उदय होगा और 7:19 पर सूर्य अस्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर जो हमें मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन से प्राप्त हुए थे। और एक बात और कह दूं कि रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक प्रोग्राम 8:15 हम लेकर आएंगे और फिर संगीत सरगम 8:00 फिर जारी करके 8:15 समाप्त कर देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आप लोग सुबह से प्रोग्राम सुन रहे हैं और क्या बोलूं मैं, प्यारा सा दिन है, सब कुछ ठीक है अमला जी, और गॉड ब्लेस यू, तड़के जुड़ गए आप हमारे साथ। तो दोस्तों स्टूडियो का नंबर है 3279-1701, और अगर बातें करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 0411-127-035। तो आगे बढ़ते हैं पहला गीत के साथ। पहला गीत जो है वो है तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, रात फतेह अली खान साहब तुलसी कुमार जी के साथ इसे अदा कर रहे हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं आज का सुबह का पहला गीत।

तो मित्रों ऐसे राहत फतेह अली खान साहब तुलसी कुमार जी के साथ, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये गीत आपको अच्छा लगा होगा। रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान आप सुन रहे हैं, हम का हमारा प्रसारण जो है वो आप तक पहुंच रहा 17 माइल रोक्स ब्रिजबन ऑस्ट्रेलिया से। शनिवार के सुबह है, प्यारा सा मौसम है आज ब्रिजबन का, और इसी के साथ ही हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत नए लोग आज प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। शायद हिंदी थोड़ा कम समझते होंगे, लेकिन साउथ इंडियन होने के नाते आप लोगों को ज़्यादा हिंदी मालूम है, संस्कृत भी बोल लेते हो, तो चलो आपका स्वागत है हृदय से, मिलते हैं दिन में फिर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो गीत है इसे राहत फतेह अली खान साहब अदा कर रहे हैं, दगाबाज रे। क्या बात है, बढ़िया सा गीत है मित्रों, और इसे श्रेया घोषाल जी साथ दे रही हैं।

0: जी मित्रों, दगा बाजरे दबंग टू का एक गीत था जो आप सुन रहे थे रेडियो ब्रिजबानी पर। और हम आगे बढ़ते हुए चलें विज्ञापन की तरफ, और एक विज्ञापन लेते हैं सर्वप्रथम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान, मैं हूं परमानंद।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: दोस्तों, 13 मिनट रह गए हैं इस समय 7 बजने में, और संगीत सरगम प्रोग्राम में तीसरा गीत जो आपके सुबह में आ रहा है वो है एक चंचल शोक हसीना मेरे सपनों में आए। क्या बात है, अभिजीत साहब सुनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी। और कभी कभी होता है ऐसे ना, कोई ऐसे ख्वाब में अगर आ जाए तो जी चाहेगा कि हकीकत में आ जाए वो। तो चलो सुनते हैं इसे।

0: जय मेरो मित्रों, मेरे दिल का चैन चुराए, बहुत प्यारा सा गीत था जो भी आप सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आगे बढ़ते हुए हम विज्ञापन की तरफ भी चलते हैं और आपको विज्ञापन सुनाते हैं और कुछ और गाने आए थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोग्राम में है, क्योंकि 15 मिनट पहले हम प्रोग्राम को छोड़ेंगे और कुछ काम से मुझे निकलना है। तो चलो दूसरा विज्ञापन।
1: इट्स टाइम टू कम्प्लीट योर सेंसस ऑन ट्यूजडे 11th of August 2026. Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: दोस्तों 7 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। चलिए आगे बढ़ते हुए आपके लिए, हमें जब से मोहब्बत हो गई बस एक मुसीबत हो गई, क्या बात है। सोनू निगम जी आ रहे हैं अलका जी के साथ, श्रोतागण आपके लिए।

0: तो मित्रों क्या बात है, इतना बढ़िया सा गीत, मैं क्या बोलूं आपसे, बहुत सारी पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। ऐसे ऐसे गाने जब हम बजाते हैं आपसे तो लोग कभी काल बोलते रहते हैं कि भाई क्या बात है, पुरानी यादों को ताज़ा किए और एक तड़प अंदर अंदर होने लगती है। फिर क्या आगे फिर हमारे ऊपर निर्भर होता है ना कि हम नंबर मिलाएं किसी का या किसी से जाकर मिलें जिससे शायद कभी मिले थे और पहचान है, बातचीत हो रही है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई है, समय ना होने के कारण है किसी और कारण, तो जुड़ें एक बार फिर। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक खबर के साथ, एक और गीत, फिर पुराने गीतों की तरफ आपको ले चलूंगा मैं।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: दोस्तों चलते हैं आगे, एक और गीत बजाते हैं, ड्यूट है, इसे अदा कर रहे हैं उदित साहब और साथ दे रही हैं अलका याग्निक जी, हिमेश रश्मैया संगीत निर्देशन किए हैं। तो चलो मैं सोचा ए बजाने के बाद ही पुराने गीतों पे चलूंगा।

और भाई फिल्म का नाम था कोई आपसा। और इसी के साथ ही 7:04 हुए हैं हमारे स्टूडियो के घड़ी में, और मैं परमानंद संगीत सरगम प्रोग्राम के साथ आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। कुछ मज़ेदार गीत और हैं जो आपके लिए हम बजाएंगे, मगर आपसे ये कहना कि आप रेडियो ब्रिजबानी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी आज सुबह उठे होंगे, अंदर अंदर कुछ ऐसे योजनाएं बनाए होंगे कि हमें कहाँ जाना, क्या करना है, और ये सब बातें हैं जो हमें याद आती हैं। तो चलो स्वागत कर रहे हैं आपको वे पुराने गीतों के कार्यक्रम में। पुराने गीतों में आज कई पुराने गाने ऐसे हैं जो दिल को छू लेने वाले हैं, जैसे अभी जो बजाने जा रहा हूँ लता मंगेशकर जी नूतन जी के लिए अदा कर रहे हैं, और फिल्म का नाम था लाड साहब, और वही लाड साहब जिसमें शमी कपूर साहब भी मुख्य भूमिका में थे। तो चलो आगे बढ़ते हुए आपके लिए मुझे जब से मोहब्बत हो गई।

0: जय मित्रों, पर्दे पर नूतन जी, और उम्मीद कर रहा हूँ गीत आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे गाने बड़े मुश्किल से सुनने को मिलते हैं और लोग कहते रहते हैं कि भैया वो गाना बजा देना, ये गाना बजा देना। लेकिन चलो, अच्छा है कि आप एंजॉय कर रहे हो, तो आगे चलते हैं इस खबर के साथ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: ये मित्रों, 11 मिनट हुए हैं 7:00 और परमानंद का साथ है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक बार फिर लता जी आ रही हैं पर्दे पर, देवानंद साहब हैं और नूतन जी हैं मुख्य भूमिका में, और लता जी का एक खूबसूरत गीत, ए तन्हाई हाय रे हाय, जाने फिर आए ना आए।

0: जी मित्रों, फिल्म तेरे घर के सामने का लोकप्रिय गीत लता जी अदा कर रही थी। और क्या बात है, कितने अच्छे इनमें शब्द थे जो आप सुन रहे थे अभी इस गीत में।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस बार आशा भोसले जी आ रहे हैं। फिल्म का नाम है स्पाइन रोम, 1968 में रिलीज की गई लोकप्रिय फिल्म, जिसके संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और गीत के रचयिता आनंद बख्शी साहब।

जय मित्रों, दिन है बाहर के, चलो मालिक ने पुकार सुनी लिया है, अब क्या समय हुआ ना, चलना है कहाँ, बाग में जाना है, बागों में जाकर एक गीत को सुनना है। और सुनाते हैं जी, लता और रफी जी का अदा किया गया गीत। जब बोलते ना अंदर से दिल की पुकार होती तो मालिक भी सुन लेते हैं, और फिर जब एक दूजे के लिए जब हम प्यार करते हैं तो दोनों को एक साथ मिला देते, कहाँ कहीं ऐसे पाक वगैरह में। तो चलें गीत का आनंद लेते हैं।

0: तो दोस्तों ये था फिल्म मस्ताना का अति लोकप्रिय गीत। कमल शर्मा जी भाई नमस्कारम, आपको भी ये गाना बेहद पसंद होता था और आप प्रोग्राम सुनते हैं हमेशा, इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भी करते थे। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ ठीक ठाक है और आप रेडियो ब्रिजवाणी को सुन रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, विज्ञापन एक बजाना है, विज्ञापन बजाएंगे उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। एमसीज इंडियन एंड आल एंड फूड का ये खबर।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ एमसीज इंडियन एंड आल एंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: एमसीज इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: अमित्रो 23 मिनट हुए 7 बजकर, चले आगे बढ़ते हुए पुराने गीतों में। अगला जो गीत है उसे लता जी अदा करें। आज लता जी का ज्यादा गीत मैं बजा रहा हूँ आपके लिए, बजाया भी हूँ। सौतन की बेटी फिल्म का नाम है और क्रेडिट टू दिस सॉन्ग गोज टू फुफा अंबिका प्रसाद जी, और उन्होंने ये गाने को जब पहली बार बजाया तो मेरे दिल को छू लिया ये, तो मैं हमेशा इसे बजाता हूँ। पर्दे पर रेखा जी हैं और बस आनंद लीजिए।

0: ये मित्रों, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ये गीत तुम्हें तड़पाने के लिए मैंने नहीं बजाया हूँ। ये गीत मैं इसलिए बजाया हूँ कि अगर कोई ऐसा जीवन में गुजरा हुआ हो और जहाँ आपने सोचा ऐसा हुआ है और कोई आपके लिए तड़प रहा है, तो जरूर भाई इट बिकम्स योर ड्यूटी कि भाई कॉल करें, बातें करें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत बहुत छोटा है और ये छोटे जीवन में बहुत कुछ हम करते रहते हैं और कभी कभी अपने आप को सोचते हैं मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन जब कोई साथी हो ना अच्छा, तब सभी कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो चलें एक खबर ले लेते हैं, खबर के बाद जन्मदिन की खबर, और जन्मदिन की खबर के बाद फिर हम मजेदार डिबेट की तरफ आपको ले चलेंगे।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: और मित्र, इस समय 29:30 हुए हैं, 7:00। मैं परमानंद हूँ और संगीत सरगम प्रोग्राम में आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि आज रानी क्रिएशंस का जो साप्ताहिक प्रोग्राम फैशन की दुनिया है, उसे हम 7:45 आपके लिए लेकर आएंगे। और आज 15 मिनट पहले भी मैं प्रोग्राम के समाप्ति पे पहुंचूंगा, यानी कि 8:15 आज संगीत सरगम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, क्योंकि आज मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। और जबकि 7:30 बज चुके हैं, तो जिनका जन्मदिन है उनको हम याद करते हुए बहुत सारी बधाइयां रेडियो ब्रिजबानी के माध्यम से भेज रहा हूं, और जिनकी शादी की सालगिरह है उन्हें विशेष रूप से याद करते हुए मालिक से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में ऐसे दिन बार बार आते रहें जहाँ पर आप खुश रहें और अपना जो विवाहित जीवन है जिसमें आप बंधे हुए हैं बहुत प्यार से कटता जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं एक मजेदार डिवोट के साथ। इसे अदा कर रहे हैं लता जी और साथ दे रहे हैं नटखट कलाकार किशोरदा।

0: जय मित्रों, 25 मिनट रह गए हैं 8 बजने में और चलें खबर की तरफ और दो खबर बजाते हैं आपके लिए। पहला,
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: और मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलें, इस बार उदित साहब आ रहे हैं अलका जी के साथ। नहीं कही थी बात जो हमने कभी।
4: सर आप फिर से तो कहना राजा।

जय मित्रों, दिल धड़का गई है और इसी के साथ ही एक और गीत का समय है, वो बजा देते हैं। फिर हम रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आपके सेवा में लेकर आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही मज़ेदार और नटखट कलाकार किशोर कुमार जी आ रहे हैं एक बार फिर, प्यारा ननदोइया सरोखा कहाँ भूल आए।

आहे छैला पनवाड़ी से नजर लड़ी गुइया मैं बेचारी हाय हाय होए होए मैं बेचारी पान खाऊं चूना चाटे सैया सरोता कहां।

0: अरे छेला हलवैया से नजर लड़ी गुइया मैं बेचारी अरे मैं बेचारी रबड़ी खाऊं पत्ता चाटे सैया सरोता कहां फूल आए
1: गुइया।

0: लठी पहिया से नजर लड़ी गुइया, अरे छह लाठी पहिया से नजर लड़ी गुइया। मैं बेचारी
1: हाय हाय हाय ओए ओए हट जा मुए, नहीं तो बिच्छू बन के डंक मारूंगी। हाँ
0: अरे मैं बेचारी बच के निकली, पकड़े गए सैया, सरोता कहाँ भूल आए गुइया, कहाँ आए नन्ना या ओए ओए, अरे जा सुन के हाय हाय हाय ओए ओए हाय हाय हाय नन्ना गुइया सरोता कहाँ आए नन्ना या सरोता भूल आए गुइया।
2: ये मित्रों किशोर कुमार और साथियों का अदा किया गया इस गीत को आप सुन रहे थे, सरोका कहाँ भूला है प्यारे नंदुइया। और चलते हैं, अब समय हुआ रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया का। आज समय बदल कर आया हूँ मित्रों, क्योंकि कुछ जरूरी काम है इसलिए। तो चलते हैं पहले रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया में आपके लिए। क्या बात है, सब बदल गया है। तो चलो मित्रों, मैं कोशिश करता हूँ एक बार फिर कि क्या हुआ, ये थोड़ा सा रदो बदल हुआ है, पर अच्छा अब आ गया।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: प्रिय श्रोतागण, स्वागत है आपका इस सवा घंटे का रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया में। शनिवार के सुबह है, प्यारा सा और खूबसूरत सा मौसम है। आप सबको रानी क्रिएशंस के ओर से हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, राम राम। और याद रहे, रानी क्रिएशंस में आपको इस समय अप टू 50% ऑफ सेल चल रहा है, जो कई जो कपड़े हैं उस पर डिस्काउंट दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ज्वेलरी वगैरह जो है $15 में क्लियर हो रहे हैं, तो आप आकर खरीद भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शादी वगैरह कर रहे हैं और एक्सेसरीज अगर है शादी का आपके पास ऑर्डर किया नहीं आया है, जैसे मेंस का ब्राइडल शूज जो है, दूल्हे का जूता, पगड़ी, स्टोल्स और जोड़ा, चाहे इंडियन वेस्टर्न या फिर बाकी किसी भी तरह के आपको कपड़े पहनना शादी में, वो सब उपलब्ध हैं। और दुल्हन के लिए सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस खबरों के साथ। और गीत, आज का पहला जो गीत है, सारी गीत के बोल हैं, इसे अदा कर रहे हैं भाई संजू राठौड़ जी। पहली बार मैं इनका गीत बजा रहा हूँ। ये धमाल 4 नया फिल्म है, उसका गाना है।

जी मित्रों, गुलाबी साड़ी और सच में प्यारा सा गीत था ये। और गुलाबी साड़ी, किसी भी तरह का साड़ी आप अगर पहनना चाहते हैं, किसी भी वैरायटी का, तो रानी क्रिएशन शॉप में आ सकते हैं, आकर खरीद बीन कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया वाइड रेंज के साड़ीज हैं, रेडीमेड साड़ीज और ब्लाउजेस के साथ अंडा स्केट्स, कंप्लीट आउटफिट साड़ी का आपको मिलेगा फॉर एट रानी क्रिएशन। बहुत ही सस्ते दाम है, $35 में क्लियर हो रहे हैं, यहाँ पर आकर आप खरीद सकते हैं। इसके कम भाव के भी कपड़े हैं साड़ी के, जो आप खरीद सकते हैं। तो रिमेम्बर द नेम रानी क्रिएशंस, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट इन उलंगेबा। चलो आगे बढ़ते हैं, चटनी गीत के बोल हैं और इसे कई कलाकार नील कमल, ममता शर्मा, आदित्य वगैरह अदा कर रहे हैं।

0: जय मित्रों, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, बहुत बढ़िया सा गीत था। और याद रहे, हर प्रकार के शॉपिंग के लिए रानी क्रिएशंस के शॉप आप आ सकते हैं और मन पसंद के कपड़ों को यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। तो याद रहे, सेल चल रहा है, अप टू 50% ऑफ आपको डिस्काउंट मिलेगा ज़्यादातर कपड़ों पर। और यहाँ पर ज्वेलरी क्लिया हो रहे हैं $15 अ सेट, इसके साथ साथ बहुत सारे और वस्तुएं जो क्लिया हो रहे हैं। और ऑनलाइन भी जाकर आप देख सकते हैं रानीक्रिएशंस.com में, यहाँ पर गिफ्ट वेयर भी हैं जो आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो अगले शनिवार तक बस आगे दीजिएगा। आखिरी गीत के साथ हम प्रोग्राम के समाप्ति पर पहुँच रहे हैं रानी क्रिएशंस का आज का, लेकिन अगले शनिवार से वही समय रहेगा 8 बजे से। तो चलें, विज्ञापन पहले सुनते हैं फिर एक गीत। चलो जी, पहले विज्ञापन बजाते हैं फिर गीत बजाएंगे।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: तो इस गीत के साथ समाप्ति पर हम पहुंचेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद है, नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, और नमस्कार सबको जी रानी क्रिएशंस के प्रोग्राम को सुनने में। और रिमेंबर, फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स, इट रानी क्रिएशंस एंड शॉप आवर्स आर 10 a.m. टू 4 p.m.

क्या मुझको चुराना है, गीत आप सुन रहे थे। और आगे बढ़ें, खबर ले लेते हैं। दो बजाना चाहूँगा, दो खबर हैं हमारे पास, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले रोहित सिंह जी का बजा देते हैं।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: 5 मिनट हुए हैं 8 बजकर, आगे बढ़ते हुए चलें एक मासूम सा चेहरा उदी जी के साथ।

0: जी मित्रों, एक मासूम सा चेहरा आप सुन रहे थे और आखिरी गीत का समय है हमारे पास, तो उसे बजा देते हैं और फिर हम प्रोग्राम के समाप्ति पर पहुंचेंगे। बिल्लू रानी कहो तो जान दे दूं।
1: हाँ, शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे जो भी देखे यही पूछे है ये किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

जी मित्रों, इस गीत को यहीं पर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि समय नहीं है, आज जल्दी खत्म करना है प्रोग्राम। अगले शनिवार को हम ठीक 6:30 से 8:30 के बीच प्रोग्राम को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू। और आज 8:30 बजे से निविया जी आ जाएंगी टॉप 10 को लेकर। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू, गुड लक टू यू, हैव अ लवली वीकेंड। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले हैप्पी वीकेंड मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वीकेंड की मुबारकबाद आप सबको। वीकेंड की ये खुशी हमेशा आपकी जिंदगी में बरकरार रहे, यही हमारी दुआ है। जी आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, वीकेंड को लेकर जितनी ड्रामेटिक तुम रहती हो उतनी तो शायद हम भी नहीं रहते। अगर आप नहीं रहते तो हूं रहने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ ऐसे ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स और ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों से तो बनती है। ओके, तो हर चीज को सेलिब्रेट कीजिए, वीकेंड को तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि वीकेंड ही है जो हर थोड़े दिन बाद आपको सुकून और राहत और अच्छी सांस देकर जाता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आ जाइए अपने इस प्रोग्राम टॉप 10 हॉट 10 में। बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको शुरू। और शुरुआत कैसे होती है वाला आपको पता ही है, लेकिन इनकेस आपको नहीं पता है, टॉप 10 हॉट 10 प्रोग्राम में हम आपके लिए ट्रेंडिंग गाने लाते हैं, और वो भी 10, सिर्फ और सिर्फ 10 चुनिंदा ट्रेंडिंग गाने जो कि हॉट हैं, हैपनिंग है और हर जगह पर तबाही मचाए हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं, उन्हीं को आपको सुनाते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की नंबर 10 सॉन्ग से, क्योंकि वीकेंड को किक स्टार्ट करने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका मुझे नहीं पता। कुछ अच्छा खाकर, दैट इज वन थिंग, बट उसके अलावा अच्छे गाने सुनकर ही अच्छे से शुरुआत हो सकती है वीकेंड की। तो टॉप 10 हॉट 10 में सबसे पहला यानी कि 10वें नंबर का गाना जो है वो है धमाल 4 मूवी का। नाउ धमाल सीरीज कितनी लाजवाब है, कितनी गजब की है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने धमाल नहीं देखी है ना, तो ऐसा कीजिए अपनी फैमिली के साथ बैठकर धमाल बिंज कर डालिए, क्योंकि वो बहुत ही मजेदार है। और अब तो धमाल का 4th पार्ट आ गया है, और अगेन वो वही स्टार कास्ट है उसमें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। सो किस चीज का इंतजार है आपको, जाइए और इस मूवी को देखिए, क्योंकि ये थिएटर्स में लगी हुई है और इसी का गाना है साड़ी। जी हाँ, सुनिए इसको, ये है 10वें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।

जी दोस्तों, ऐसे के साथ आप बोलोगे कि निवेश शर्मा, ये गाना तो सुना सुना लग रहा है और काफी पॉपुलर गाना लग रहा है, ऐसा भी नहीं है। वेल, अगर आपको ये लग रहा है तो आपको एकदम सही लग रहा है, क्योंकि यही बाकी सबको भी लग रहा है। जी, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, सबको क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है, बताओ तो सही। वेल, ये गाना जो है वो संजू राठौड़ का गाया हुआ गाना है और ये गाना धमाल 4 मूवी वालों ने ले लिया है। लेकिन ये गाना ऑलरेडी काफी हिट है और ईशा मालविया के साथ उन्होंने लाया था इस गाने को, काफी हिट हुआ था, काफी ट्रेंडिंग रहा था ये स्पॉटिफाई और भी म्यूजिकल स्ट्रीमिंग साइट्स पे, पर वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि धमाल के मेकर्स को लगा कि ओके, व्हाई मेक अ न्यू सॉन्ग व्हेन वी हैव ऑलरेडी अ गुड सॉन्ग, और हम उसे ले सकते हैं सीधा जाके, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। यू अ फैन ऑफ दिस थिंग? जी हाँ, क्या आपको अच्छा लगता है जब पहले ही जो पॉपुलर गाने हैं, जो पहले ही काफी पहले बन के आ गए होते हैं और मूवी वाले कोई भी काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, उन गानों को सीधा ले आते हैं अपनी मूवीज में? डू यू लाइक दैट? वेल, डू लेट मी नो योर थॉट्स। यहाँ पर धमाल 4 थिएटर्स में लगी हुई है, 10 जुलाई को रिलीज हो चुकी थी और देखिए, बताइए मुझे आपको कैसे लगी। इसी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि मूवी का है, चांद मेरा दिल। अब ये मूवी जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और ये मूवी जो है वो थिएटर से उतर भी चुकी है। आप इसे कहां देख सकते हैं, आई एम गोना टेल यू दैट। पर गाने का नाम है खासियत। जी हाँ, खासियत। जचदानी जचदानी ना ना ना ना ना ना ना। आप लोग बोलोगे निवेश शर्मा फिर से ये ना ना ना ना ना ना, प्लीज तुम ना ना गाना ना ना ना। जी हाँ, आई नो, कुछ भी बोलिए, गाना बेशक मैं बुरा गाती हूँ लेकिन ह्यूमर मेरा अच्छा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जी, ऐसे के साथ सुनते हैं खासियत फ्रॉम द मूवी चांद मेरा दिल, 9वें नंबर का गाना।

जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है कि अनन्या पांडे और लक्ष्य सेन की ये मूवी है, और जैसे मैंने कहा था इट्स अ म्यूजिकल मूवी एंड म्यूजिकल सेंटिमेंटल सैयारा काइंड ऑफ मूवी, और प्रेम कहानी है बहुत ही ज्यादा पैशनेट, पर उसमें बीच में बहुत उतार चढ़ाव है, बीच में बहुत रोना आ सकता है। बट एक चीज है जो मुझे आपको बतानी है कि आप इससे देख नहीं सकते, क्योंकि इस मूवी को देखने के लिए या तो आपको एप्पल टीवी सब्सक्राइब करना पड़ेगा या तो आपको अमेज़न प्राइम पे से रेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर इसे फ्री में देखना है किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो ये जियो हॉटस्टार पे है, और जियो हॉटस्टार ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता। सो इसके अलावा आप इसे एप्पल टीवी पे चेकआउट कर सकते हो, रेंट कर सकते हो, और साथ में आप इसे रेंट कर सकते हो कहां पर, ऑफकोर्स अमेज़न प्राइम पे। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, क्योंकि वो है बंधु। जी हाँ, ये जो ट्यूनिंग आपको सुनाई दी ये तुम ही हो बंधु की है। ऑफकोर्स तुम ही हो बंधु जो है वो कॉकटेल का पहली वाली कॉकटेल का गाना है। इस वाले गाने का नाम रखा है बंधु 2.0। लेकिन कॉकटेल 2 अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोगों को रेज बेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कॉकटेल की कहानी वैसी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कॉकटेल की कहानी उन्हें बहुत पसंद आई, उन्हें एक्टिंग बहुत पसंद आई, बिकॉज एक्टिंग पसंद आनी चाहिए। बहुत ही गजब के ए लिस्टर एक्टर्स इसमें लिए गए हैं, बट स्टोरी वाइज पीपल are complaining, they have complaints, they are like what is happening in this movie and why are people watching this movie, why am I saying that, well aap dekhiye movie aapko khud hi pata chal jayega, kyunki bahut hi pechida kahani hai, that's all I can say because I don't want to spoil it for you, go for it if you wanna watch it at your own risk, when I say at your own risk I'm not gonna say it's a bad movie, but theek hai aapko story front pe aapko aisa lagega ki why, like Why? ये करने की क्या जरूरत, मतलब ये ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी। जी हाँ, ऐसे आपको लग सकता है, बट गाने इसमें अच्छे हैं, सो गानों को एंजॉय करते हैं। बंधु 2.0 8वें नंबर का गाना है इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और वीकेंड है दोस्तों, तो आपको तो पता ही है, मजे हमको वैसे ही आ जाते हैं। मतलब वीकेंड का नाम ही आपको अच्छा लगता है, मतलब सब कुछ आपको अच्छा लगता है। मुझे तो मतलब कोई इरिटेट करने की कोशिश करता, मैं तो इरिटेट भी नहीं होती, मुझे इतना अच्छा लगता है वीकेंड। आप लोग बोलोगे निविया शर्मा इसमें तुम अकेली नहीं हो, हम भी साथ में हैं, हमें भी अच्छा लगता है सब कुछ, कुछ भी बुरा नहीं लगता है। सो एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं हमेशा करती हूं और मैं चाहती हूं मेरे लिसनर्स भी करें। सो एक रिचुअल बनाइए, और आपको पता है कि निविया शर्मा कोई रिचुअल इंट्रोड्यूस करने वाली है, तो इट हैज टू डू समथिंग विद फूड। Yeah, you are right and you know me so well. The thing is कि अपने वीकेंड को enjoy करने के लिए आपको अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है सैटरडे मॉर्निंग में, एंड इट हैज टू बी योर रिचुअल, इट शुड बी योर रिचुअल। इफ इट इज नॉट यट, इफ इट इज इट इज यट, देन मेक इट नाउ। जी हाँ, अब बनाइए इसको रिचुअल, और फिर मुझे बताइए। हर सैटरडे मैं आपसे पूछने वाली हूँ, आज आपने क्या जबरदस्त गाया वीकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए, इस जबरदस्त रिचुअल को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है? इसी के साथ अगला गाना, सातवें नंबर का गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि है उच्चा लंबा कद। नाउ ये गाना हमें दीवाना बना चुका है व्हेन 2007 की बात है, जब ये मूवी आई थी वेलकम, एंड या आई वाज अ फैन। 2007 और 2008 की बात है जब ये मूवी आई थी, और इसने सबको फैन बना दिया था। कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की जोड़ी ने तहलका मचा दिया था, वही है गाना उच्चा लंबा कद। बट ऑफकोर्स नॉट एग्जैक्टली दैट, इसका भी एक और वर्जन है जो वेलकम टू द जंगल, यानी कि वेलकम के तीसरे पार्ट का यही गाना है। जस्ट दैट कि इसमें कैटरीना कैफ नहीं है, इसमें दिशा पाटनी है। चलिए सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और भी बातें।

0: We miss you, Katrina.
1: Bring the bass back.
2: And we too miss you, Katrina. जी हाँ, हमें भी याद आ रही है कैटरीना की, क्योंकि कैटरीना की वो अदाएं जो वेलकम वन में इसी गाने पर हमें दिखी थी, वो कोई रिक्रिएट नहीं कर सकता. When it comes to dancing और showing अदाएं, कैटरीना कैफ स्टैंड स्टॉल. चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब एक और गाना सुनाऊंगी आपको, और फिर मैं आपको सीधा लेकर जाऊंगी कौन कौन सी मूवीज आप देख सकते हो इस वीकेंड बाहर थिएटर्स में जाके, नजदीकी सिनेमा घरों में जाके. लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक मजेदार सा गाना, और ये मजेदार सा गाना उसी मूवी में से एक का है जो कि अभी थिएटर्स में लगी हुई है, और इसमें काफी मारधाड़ है, और इसमें आलिया भट्ट उस प्यारे से चेहरे के साथ बहुत सारा लात घूसा करने वाली है. एंड इससे मेरा क्या मतलब है, वेल ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा, और अगर मूवी का नाम है अल्फा तो थोड़ी तो अल्फागिरी करनी पड़ेगी, राइट? बट द थिंग इज कि यहां बंदे नहीं कर रहे हैं अल्फागिरी, बंदियां कर रही हैं. या दैट इज द ओनली डिफरेंस, उसके अलावा बाकी सब सेम है. इसी के साथ मैसेकर सुनते हैं, जो कि है अल्फा मूवी का गाना, और फिर करते हैं और भी बातें.

0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन. au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
3: जी दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आगे की ओर जाने का. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं उसी को. जी हाँ, मूवीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन सी मूवी आप अकेले जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, और कौन सी आप अपने बच्चों के साथ जा सकते हो, सब बताएंगे हम. सबसे पहले तो जो मूवी मैं कहूंगी, लेट्स टॉक अबाउट द बॉलीवुड फर्स्ट. कॉकटेल 2 आप देख सकते हैं, जो कि थिएटर्स में लगी हुई है. लेकिन अगेन, जैसे मैंने कहा था कि रेज बेट करने की कोशिश आपको की जा रही है, क्योंकि राइटिंग वाइज आपको लगेगा अरे ये क्या लिखा है और क्यों लिखा है, मतलब कोई सेंस बन रही है इस चीज की. दैट्स हाउ यू कैन फील दैट. सो डोंट कम एट मी, वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क. आप पहले ट्रेलर देखिए और फिर मुझे बताइए. और अगर आप थोड़ा ऐसा ही हल्का फुल्का कुछ देखने जा रहे हैं, मजे करने के लिए जा रहे हैं, ज्यादा आप एकदम रच बस नहीं जाते मूवीज में, देन यू कैन गो फॉर इट. जी हाँ, इसके अलावा एक और मूवी जो आप देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, एंड दैट इज नागा बंधम द सीक्रेट ट्रेजर. नाउ दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मिस्टीरियस, बिकॉज ये मूवी है बहुत सारे जॉनर से मिलकर बनी हुई. एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिलर, ये सब आपको मिलने वाला है, और थोड़ी सी फैंटेसी भी इनफैक्ट आपको मिलने वाली है. इसके साथ एक हल्की फुल्की बवाल मूवी जिसका नाम ही धमाल है, आप उसे देख सकते हो. और धमाल सीरीज जो है वो लिटरली मजेदार है. सो गो फॉर इट विद योर फैमिली एंड यू कैन वॉच इट. आई मीन नॉट विद योर किड्स, बट या यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली. और या मजेदार है मूवी, आप एंजॉय करोगे. कॉमेडी है, कॉमेडी किसको पसंद नहीं आती है, राइट? सो एडवेंचर कॉमेडी इसमें आपको मिलने वाली है. और इसी के साथ एक और मूवी जो कि आप देख सकते हो वो है अल्फा. नाउ अल्फा के बारे में ही मैं बात कर रही थी. ये जो गाना भी आपने सुना, मास्क, जी हाँ, ये अल्फा मूवी का है. इसमें है आलिया भट्ट, इसमें है शर्वरी बाघ, इसमें है अनिल कपूर, और इसमें है बॉबी देओल. जी हाँ, बॉबी देओल. मतलब आप लोग बोलोगे कि पहले मियां की हड्डियां तोड़ी, अब बीवी की तोड़ रहे हैं. आप लोग बोलोगे क्या बोल रहे हो निव्या. वेल, एनिमल में यहां पर ये फाइट करते हुए नजर आए आपको रणबीर कपूर के साथ, यहां उनकी बीवी आलिया भट्ट के साथ मारपीट हो रही है. यहां सुनिएगा, देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसी लगी. इट्स अ एक्शन एंड थ्रिलर मूवी. ऑफकोर्स आलिया भट्ट इज गोना किक सम रियल आज इन दिस मूवी, सो गो फॉर इट. बट एक और मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है मैं वापस आऊंगा. इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी अबाउट अ लव स्टोरी विच हैपेंड ड्यूरिंग द टाइप ऑफ पार्टीशन, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए. पहले वो दोनों प्यार में थे, फिर दोनों जो है वतन के अलग होने की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं. क्या होता है उसके बाद, यू गोना नो इन दिस. इसके गाने बहुत प्यारे हैं, शर्वरी बाग है इसमें, वेदांग रैना है इसमें, और बहुत ही खूबसूरत इनकी ये कहानी है. इसके अलावा एक और मजेदार मूवी, फन मूवी, विच इज वेलकम टू द जंगल, वो वेलकम 3, आप इसे भी देख सकते हैं विद योर फैमिली. सो गो फॉर इट. ये सारी की सारी मूवीज जो है वो आप देख सकते हो. अब हम जाएंगे कुछ और ऑफ बीट मूवीज की तरफ, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन पहले मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक और गाना, जो कि है अगेन उसी मूवी का जिसे मैंने हाईली रिकमेंड किया है, और वो है मैं वापस आऊंगा। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और भी बातें।

जी हाँ दोस्तों, तो ये गाना जो है वो मैं हमेशा तारीफ करती हूँ उस गाने की। और ये गाना पिछले 4-5-6 हफ्तों से ट्रेंड कर रहा है हमारे इस प्रोग्राम में। रीजन बीइंग इम्तियाज अली एंड एआर रहमान का वो जोड़ी जो कि लिटरली जब भी साथ आया कुछ खतरनाक इन्होंने बनाया है। पटाखा गुड्डी देख लो या फिर कोई भी मूवी देख लो जिसमें भी ये दोनों साथ आए, क्या गाने बनाते हैं ये लोग। चलिए इसी के साथ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि कैसे आप देख सकते हो बहुत सारी मूवीज अपने नजदीकी सिनेमाघरों में, लाइक लिटरली बहुत सारी मूवीज लगी हुई हैं। कुछ बॉलीवुड मूवीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब जरा बात करते हैं कुछ हॉलीवुड मूवीज के बारे में। सबसे पहले, अगर आप फैन हो हॉरर के और अगर आपको हॉरर मूवीज जो है वो किक देती हैं, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो इविल डेड बर्न। इविल डेड रिटर्न नहीं, इविल डेड बर्न। जी हाँ, सो ये है हॉरर सुपर नेचुरल एंड थ्रिलर। ऑफकोर्स 10 से 10 में से 8.1 रेटिंग मिला है इसे, सो यू कैन सी वाई, मतलब आप खुद ही देख लीजिएगा क्यों। और इसी के साथ आप देख सकते हैं मोआना। जी हाँ, मोआना देख सकते हैं आप। एंड मोआना जो है एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है, आप इसे एनिमेटेड वर्जन में देख चुके हैं, अब आप इसे रियल वर्जन में देखने वाले हैं। जी हाँ, विद ड्वेन जॉनसन, योर फेवरेट एक्टर ड्वेन जॉनसन। आई एम अ फैन लिटरली। एंड ऑफकोर्स इसमें आपको कैथरीन लागिया भी मिलेंगी। तो मोआना देखिए, और एनिमेटेड वर्जन में नहीं बल्कि रियल वर्जन में, और अपने बच्चों के साथ देखिए, बिकॉज मोआना इज अ किड किड स्टोरी, मतलब बच्चों के साथ इसको देखने का अलग ही मजा है। जी हाँ, इसी के साथ आप देख सकते हैं एक और मूवी। जी हाँ, गेस कीजिए। द टाइम हैज कम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओडेसियस की वो जर्नी जो कि 20 साल लग गए उसे पूरी करने में, अपने घर वापस आने में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मैट डेमन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टोफर नॉलन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफकोर्स द ओडेसियस। जी हाँ, द ओडेसी के बारे में बात हो रही है। मूवी हो रही है रिलीज इस वीकेंड, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था, अपनी टिकट्स को बुक कर लीजिएगा। एडवांस टिकट्स जो है वो शुरू हो गई थी, ऑनलाइन आ चुकी थी, आप उसे बुक कर सकते हो। और अभी भी नहीं किया है तो अब कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक इफ देर इज समथिंग, इफ देर इज अ वन मूवी दैट यू शुड नॉट मिस इन दिस होल लिस्ट, देन दैट हैज टू बी द ओडिसी। मतलब क्रिस्टोफर नॉलन अगर कुछ लेकर आए, आप कैसे नहीं देखोगे, आपको देखनी है। दैट्स इट फॉर मैट डेमन, फॉर एन हाथवे, फॉर टॉम हॉलैंड, फॉर जेंडेया, फॉर रॉबर्ट पैटिंसन, फॉर लुपिटा न्यांग, मतलब इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स एक मूवी में आकर आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आप कैसे नहीं जा सकते देखने। सो मैंने कहा ना, आप इन पूरी लिस्ट में कोई भी मूवी छोड़िए, लेकिन ये मत छोड़िएगा, बिकॉज दिस इज अ मस्ट। चलिए इसी के साथ, द ओडिसी के बारे में मैं आपको बता चुकी, अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूं, जो कि है कॉकटेल 2 का, और ये है जब तलक।

0: दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कहा कि द ओडिसी जो है वो रिलीज हो गई है और इस वीकेंड आप इसे देख सकते हो. सो मैं अब आपको एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती हूँ जो कि ऑफ कोर्स आपके स्पाइडरमैन से रिलेटेड है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टॉम हॉलैंड. जी हाँ, आपको पता है कि टॉम हॉलैंड जो है वो स्पाइडरमैन है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि द ओडिसियस के जो बेटे का किरदार निभा रहे हैं इस मूवी में द ओडिसी में, वो भी टॉम हॉलैंड है और उनकी वाइफ जेंडेया भी इसमें है. मतलब आयरन मैन में कह रही हूँ, स्पाइडरमैन में तो दोनों वो मिल ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, इसमें भी वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं. लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है. सो क्रिस्टोफर नॉलन कॉल करते हैं टॉम हॉलैंड को और वो उनको बुलाते हैं अपने घर पे. वो उनको द ओडिसी की स्क्रिप्ट देते हैं, वो वहां पर थोड़ी सी रीड करते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात करते हैं. कोई भी एक्टर क्रिस्टोफर नॉलन के साथ काम करने के लिए उतना ही एक्साइटेड होगा जितना कि बॉलीवुड में कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस संजय लीला भंसाली की मूवी में काम करने के लिए रहती है. लाइक यू कैन इमेजिन, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन इट वॉज. टॉम हॉलैंड जो है वो स्क्रिप्ट लेकर आते हैं घर पे, जो कि ऐसे अलाउड नहीं होता है, बट टॉम हॉलैंड कहते हैं कि मैं इसे बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना चाहता हूं और मुझे इसको लेकर घर जाना है. तो क्रिस्टोफर नॉलन कहते हैं ओके, ठीक है. सो वो जाते हैं घर और घर जाकर वो अपनी वाइफ जेंडेया के साथ इसको पढ़ते हैं. जेंडेया को जब पता चलता है कि क्रिस्टोफर नॉलन की पिक्चर है और ऐसे करके इसका नाम है द ओडिसी, इट्स अबाउट द ग्रीक मैथोलॉजी, शी वाज सो एक्साइटेड बिकॉज शी हैज ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन. नाउ टॉम हॉलैंड जो है अगले दिन फिर से उनकी मीटिंग के लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि यू नो व्हाट, आई लव द मूवी, आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई लाइक माय पार्ट, मुझे मेरा पार्ट बहुत पसंद आया, मुझे मूवी बहुत पसंद आई, स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी. बट द क्लिक वॉज, यू नो, बट द कैच वॉज कि ये मूवी की शूटिंग उसी दिन शुरू हो रही थी जिस दिन कि उनकी स्पाइडरमैन जो अब जो नई स्पाइडरमैन आई है लेटेस्ट वाली, उसकी शूटिंग भी उसी दिन शुरू हो रही थी विद टॉम रॉथमैन. जी हाँ, अब ऐसे में आगे क्या होता है, वेल आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, पर पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना जिसका नाम है बन जा तू. नाउ ये गाना जो है वो इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा बवाल मचाया हुआ और ये तीसरे नंबर का गाना है हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट.
1: वो एक शख्स थी और हम दो बर्बादियां.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ, और मैं आपको सुना रही हूँ स्टोरी कैसे टॉम हॉलैंड और जेंडेया ने शुरू किया काम क्रिस्टोफर नॉलन की उस मूवी में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जेंडेया वॉज ऑलवेज अ फैन ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन, और कौन नहीं बनना चाहेगा उनकी मूवी का पार्ट। इंटरस्टेलर को वो लिटरली अपनी बेजुबानी जो है, मतलब जुबानी वो डायलॉग्स जो है वो सारे सुना सकती है बिना याद किए, लाइक उनकी मेमोरी में है वो सारे। तो शी वॉज अ फैन ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन। अब ऐसे में जब उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड को क्रिस्टोफर नॉलन एक बहुत ही जबरदस्त सा रोल ऑफर कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बट जब अगले दिन वापस आते हैं टॉम हॉलैंड, क्योंकि उनकी मीटिंग होती है, उन्होंने हाँ कहना होता है क्रिस्टोफर नॉलन को, और वो कह देते हैं हाँ, तो वहां पर क्रिस्टोफर नॉलन टॉम हॉलैंड को कहते हैं कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे। जी हाँ, टॉम हॉलैंड बोलते हैं कि हाँ हाँ बोलिए, मैं किस, मतलब बोलिए तो सही आप। तो वो बोलते हैं कि मैं द ओडिसी में एथना के कैरेक्टर में तुम्हारी वाइफ यानी कि जेंडेया को कास्ट करना चाहता हूं। तो टॉम हॉलैंड ये सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ही वाज लाइक वाव, आई मीन मैं इसमें बुरा क्या मानूंगा, इट्स अ ग्रेट न्यूज। लेकिन यहां पर टॉम हॉलैंड ही जेंडेया को ये जाकर बताते हैं कि उन्हें ये रोल ऑफर हुआ है। क्रिस्टोफर नॉलन नहीं बताते, बल्कि टॉम हॉलैंड के जुबानी उन्हें पता चलता है। टॉम हॉलैंड जाते हैं ड्राइव करके अपने घर, और जब वो जेंडेया को कहते हैं कि यू नो व्हाट, मैंने हाँ कर दी है मूवी के लिए, और मैं चाहता हूं तुम एक बार फिर से स्क्रिप्ट रीड करो, बट देन शी वॉज लाइक ओके, मैंने कल रात को ही स्क्रिप्ट रीड की थी तुम्हारे साथ, इट्स अ गुड यू नो रोल फॉर यू एंड यू आर गोना लव इट, सो ऑफकोर्स यू गोना डू इट वेरी वेरी गुड। सो यहां पर टॉम हॉलैंड कहते हैं नो, आई वॉन्ट यू टू रीड दैट अगेन, बट एथेना को अपने दिमाग में रखकर इस स्टोरी को, स्क्रिप्ट को फिर से रीड करो। और वहां पर जेंडेया को पता चल जाता है कि यहां पर तो कुछ झोल हो रहा है। फिर उन्हें पता चल जाता है कि क्रिस्टोफर नॉलन उन्हें ये मूवी ऑफर कर रहे हैं एथना के कैरेक्टर के लिए, एंड शी वॉज ऑन क्लाउड 9। सो दैट्स हाउ दे बोथ गोट स्टार्ड इन क्रिस्टोफर नॉलन मूवी, विच इज अ वेरी गुड स्टोरी। इसी के साथ यहां पर अगला गाना जो कि है लिटरली कौन से नंबर का, सेकेंड नंबर का, माशू का, आप सबके लिए।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब नंबर वन गाने का वक्त हो गया है, और इसके साथ वक्त हो गया है जाने का भी, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम यही खत्म होता है। आई होप आपने इसे एंजॉय किया हो, आई होप हमने आपके वीकेंड को एंटरटेनमेंट से एटलीस्ट थोड़ा तो भरा हो। जी हाँ, सो दैट्स अबाउट इट। एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, बिकॉज हम आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल पूरी तरह से रखते हैं, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होती है। सो या दैट्स अबाउट इट। नंबर वन सॉन्ग है इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का मस्कारा, जो कि पहले पिछले हफ्ते दूसरे नंबर पर था। इस बार जो दूसरे नंबर का गाना है वो पहले पे आ गया है, पहले का जो है वो दूसरे पे आ गया है। बट या वी लव बोथ द सॉन्ग, सो आई थिंक इट मेक्स सेंस। दैट्स इट, बाय बाय, सी यू टाटा, मिलते हैं आपसे मंडे को।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉग से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
2: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents. A 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa

0: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।